सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 और 43 सेकंड हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये सुनते हैं इस समय चिंतन। वचन स्वर रचना सिंह का है।
1: साहस इंसान का एक मानवीय गुण है जो हमें आपात स्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब जब हम विपरीत परिस्थितियों में किसी मुश्किल कार्य को करने की ठान लेते हैं, तब यही साहस हमें बल प्रदान करता है। एक साहसी व्यक्ति कम अवसर, कम संसाधन होते हुए भी

0: बड़ा से बड़ा निर्णय कर लेता है। साहस की भावना के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। साहस हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साहस का मतलब यह है कि समझदारी और विवेक के संयोजन के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तियों ने अपने साहस और संकल्प के बल पर ही सफलताएं अर्जित की। दुश्मनों के मुकाबले संख्या बल में कम होने के बावजूद पोरस, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई अपने साहसिक गुणों के कारण ही इतिहास में अमर हो पाए। मनुष्य के सभी गुणों में साहस सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की जननी है। इतिहास में उसी की गाथा दर्ज हो पाई है जिसने समय पर सही निर्णय लेते हुए साहस का परिचय दिया। संकट में साहस से काम लेना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। बिना निराश हुए पराजय को सह लेना साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। साहसी व्यक्ति को यदि कभी पराजित होना भी पड़ता है तो उसकी पराजय क्षणिक होती है, अंत में विजय भी उसी के हाथ लगती है। जीवन में आने वाले संकटों को वही आसानी से पार कर सकता है जिसमें साहस के साथ कठिन निर्णय लेने की क्षमता हो। जो पानी से डरते हैं उनके ही डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। लहरों से खेलने का अभ्यास करने वालों को डूबने का खतरा नहीं होता। महान दार्शनिक सुकरात अपने सत्य और साहस के बल पर हमेशा सत्य ही स्वीकारते और बोलते थे, जिसे हम सत साहस कहते हैं। साहस शरीर की शक्ति का नाम है तो सत साहस आत्मा की शक्ति का नाम है। प्रबल विचार शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना सत साहस है। इंसानियत, देश, समाज और सत्य के लिए मौत को हंसते हुए गले लगाने में भी साहस ही आलोकित होता है। जब हमारे अंदर संवेदना अपनी पूर्णता की राह पर बढ़ती जाती है, तब सत साहस हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम अज्ञान, अनाचार, हिंसा, अमानवीयता और क्रूरता को परास्त कर डालते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डी मैकडॉनल्ड के अनुसार कौन क्या करता है और कितना सफल होता है, इस बात का महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि किसने कितना ऊंचा आदर्श अपनाने में सत्य निष्ठा और साहस को अपना आधार बनाया। जहां इस स्तर की मजबूती होगी, वहीं अवरोधों से लड़ने और लंबे समय तक अविचल भाव से लक्ष्य तक चलते ही रहने का साहस भरा विश्वास पाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि साहस एक जीजी विषय है, संकटों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने की। भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में लिखे श्लोक के अनुसार साहस अविषाद शक्ति शौर्य धैर्य आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इस प्रवृत्ति से समाज एवं मानवता को लाभ पहुंचता है। साहस का सकारात्मकता से गहरा रिश्ता है। सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अन्याय के खिलाफ विशाल जनमत को खड़ा किया। यह साहस के बिना संभव नहीं था। दशरथ मांझी जैसे साधारण व्यक्ति का एक साहसिक फैसला ही उन्हें भीड़ से अलग एक नई पहचान देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जो मनुष्य साहस नहीं छोड़ता वह कभी पराजित नहीं होता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर रचना सिंह का था। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा कार्यक्रम में, आ जाइए सुनते हैं वार्ता। विषय है कृषि वाणिकी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से, यानी कि फसलों और वृक्षों से लाभ प्राप्त करने की विधि को कृषि वाणिकी कहा जाता है। इसमें हम पेड़ों के साथ साथ शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, फल फूल एवं

0: अनेक तरह के वृक्षों को लगा करके लाभ लेते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ है खेतों पर वनों के विकास एवं विस्तार से है। कृषि वानिकी कृषकों को अकेले अथवा भागीदार में अपने संसाधनों के संबंध में अपनी भूमि पर वन लगाने अथवा प्रबंधन करने की दिशा में किया गया एक संकल्प है। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं इस संबंध में आप जान लें। वर्षा के जल का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेकार बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि का सुधार भी इससे होता है। बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी इसका प्रमुख कार्य है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जलवायु को सुव्यवस्थित कर सुधार करना भी कृषि वानिकी का उद्देश्य है। किसान अपनी जमीन से आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, फल, चारा, जलावन, लकड़ी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। निम्न भू उर्वरता, अधिक क्षरण और भू अपरदन से प्रभावित भूमि के टिकाऊपन तथा भूमि उत्पादकता में बढ़ोतरी इससे कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि वानिकी का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भवन निर्माण के लिए इससे सस्ती और हल्की लकड़ी प्राप्त होती है। स्थानीय लोगों के लिए जलावन हेतु लकड़ी मिल जाती है, पशुओं के लिए चारा भी मिलता है और हरी खाद भी प्राप्त हो जाती है। ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा भी होती है। कृषि वानिकी हेतु जो आप पौधे का चुनाव करेंगे या पेड़ का चुनाव करेंगे वो शीघ्र बढ़ने वाला होना चाहिए, जिससे कि कम समय में किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सीधा तना वाला होना चाहिए ताकि ज़्यादा छाया नहीं फैलावे, और ज़्यादा छाया नहीं फैलाने से हमारी मुख्य फसल को नुकसान नहीं हो। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। जड़ें भूमि में नीचे जाकर पोषक पदार्थ ऊपर लाती हैं, जिससे कि अन्य फसलों को भी लाभ होता है। दलहनी बीज वाले जो वृक्ष होते हैं कृषि वानिकी में वे बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं और उससे मुख्य फसल को भी प्राप्ति हो जाती है। कम से कम शाखाएँ निकले और जमीन पर से ही अधिक घनी न हो, इस बात का आप ध्यान रखते हुए वैसे वृक्षों को साथ लगावें। कम पोषक तत्व, सिंचाई और देखभाल की आवश्यकता पड़े उस तरह के पेड़ों को भी लगाना चाहिए। प्रतिकूल दशाओं में भी सफलतापूर्वक जो पेड़ वृद्धि कर सकें कृषि वानिकी के लिए आवश्यक होते हैं। कृषकों के लिए उसकी पत्तियां, लकड़ी आदि लाभदायक हो, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्रदान कर सकें, रोगों के प्रति रोगरोधी हो, छाया से सहनशील हो, ऐसी फसलें और ऐसे वृक्षों को ही लगाना चाहिए। जड़ें एवं उनकी वृद्धि की विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे भूमि की विभिन्न सतहों पर कृषि फसल प्रभावित न हो। पौधों का प्रत्येक भाग किसानों के लिए उपयोगी है, तो इसलिए आप कृषि वानिकी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ईंधन, चारा, पत्ती और रेशा, गोंद आदि प्राप्त हो सकता है। भूमि कटाव की रोकथाम हो सकती है। कृषि के साथ यदि आप पशुपालन करते हैं तो कृषि वानिकी इसके लिए वरदान है। इस पद्धति के द्वारा ईंधन की भी प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ियों की भी प्राप्ति होती है। तो यदि किसानों की आय दोगुनी करनी है तो इसके लिए कृषि वानिकी आवश्यक है।
1: कृषि वानिकी, अभी आपने ये वार्ता सुनी। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। ये पटना है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुर्मुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं सुनिए वंदना, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। आइए करते हैं शुरुआत इस देश वंदना की।

भक्त संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कार्यक्रम है वंदना। ये प्रस्तुत है गुरु नानक देव जी की ये भक्ति रचना अंजन चटर्जी और साथियों के स्वर में।

कहते हैं प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और कोशिश ऐसी करो कि जैसे सब कुछ खुद पर निर्भर है। भक्ति संगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना में। आइए सुनते हैं अब एक पारंपरिक भक्ति रचना। कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य

की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस से पाठ सुना। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से आज की पहली सभा के कार्यक्रम। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संजीव कुमार से ली गई एक भेंटवार्ता। विषय है मलेरिया से बचाव के तरीके।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर एवं हेड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग IGIMS पटना। आप साथ में नोडल ऑफिसर हैं नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर IGIMS पटना में। श्रोताओं को हम बताते चलें कि आज का हमारा विषय है मलेरिया से बचाव के तरीके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया होता कैसे है, और अगर होता है तो कैसे सावधानियां बरती जाए और बचाव के क्या क्या तरीके अपनाए जाएं।
2: मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के एक पैरासाइट्स है जिसके बॉडी में प्रवेश करने से होती है, और इस पैरासाइट्स को फैलाने वाला जो चीज है वो है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, जो रात के टाइम में, शाम के टाइम में और रात में, ये जो है घर घर में, खासकर जहाँ पर गंदे जगह रहते हैं या हर एक के घर में, लगभग जहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती है वहाँ पर फैले रहते हैं, और ये जिसको काटते हैं साथ साथ अपना सलाइवा के साथ साथ ये स्प्रेड कर देते हैं, और इस बॉडी के अंदर में जाने के बाद से ये सबसे पहले उसके लीवर में घुस जाते हैं, और लीवर में जाकर हेपेटोसाइट्स, उसके जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करने लगते हैं, और अल्टीमेटली मरीज जो है मलेरिया का शिकार हो जाता है, उसके लक्षण आने लगते हैं।

0: फीवर और बहुत सारे चीज।
1: जी, तो कई बार होता है कि मलेरिया में रिपीटेटिव बुखार आता है, तब लोग समझ पाते हैं कि अच्छा मलेरिया हुआ हुआ, तो हम टेस्ट करवाएं। तो शुरुआत में कैसे पता चले लोगों को कि ये मलेरिया के लक्षण हैं? क्योंकि बुखार आता है तो वो तो दवाई लेकर के ठीक हो जाते हैं।
0: देखिए, ये इस तरह की समस्याएं तो रहती है। जब भी किसी आदमी को बुखार लगता है तो एक लिस्ट ऑफ द डिजीज रहती है जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकती है, वायरल हो सकती है। तो ये जब तक इसको जांच करके देखा नहीं जाए और उसका हिस्ट्री नहीं पता रहे कि भाई ये मच्छर वाले इलाका में रहता है या ये मच्छरदानी लगा कर रहता है, कितना सावधानी से रहता है, तो एक तरह से उसकी हिस्ट्री और उसके दिनचर्या के आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि इसको क्या हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि मलेरिया का जाँच करके हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारा किट रहता है जिसके थ्रू जो है हम लोग टेबलेट का टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि मलेरिया इसको है या नहीं है।
1: जी, तो मलेरिया से बचाव के क्या तरीके हों, और हो जाने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए?
0: मलेरिया से बचने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है फुल स्लीव का ड्रेस पहने, जिससे कि आपको मच्छर को काटने के लिए जगह ही कम बचे। दूसरी बात जरूरी है कि आप लाइट कपड़ा पहने, क्योंकि डार्क कपड़ा जो है वो मच्छर को अट्रैक्ट करता है। तीसरा चीज़ है कि शाम में या रात में जब भी निकलें तो अपना मॉस्क्यूटो रिपेलेंट लगा कर निकलें, और अगर घर में है तो अपना मच्छरदानी लगाइए और मॉस्क्यूटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए। ये बचाव ही मेन उसका उपाय है।
1: जी, और दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी चाहिए, और हॉस्पिटल जाने की जब नौबत आ जाए तो उसमें क्या किया जाए?
0: दवाइयाँ तो अपने से नहीं लेना चाहिए। जब भी अगर मलेरिया डायग्नोस हो जाए तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहाँ से उसे संबंधित दवा लेना चाहिए। क्लोरोक्विन और भी बहुत सारे दवाइयाँ जिसके आधार पर जो कितने डोज में खाना है, ये करना है, ये सब जो है डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस सीवियरिटी का है। क्योंकि अगर बात किया जाए मलेरिया का, तो उसमें भी कई तरह के होते हैं कि और उसमें सीवियर वैरायटी के मलेरिया होते हैं, तो किस ग्रेड का है उस चीज़ को समझना है और उसके आधार पर ही दवा लेना चाहिए। दवा बिना चिकित्सीय सलाह से नहीं लेना चाहिए।
1: जी, डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और मलेरिया से बचाव के तरीके के बारे में इतनी अच्छी जानकारियों को आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मलेरिया से बचाव के तरीके, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर संजीव कुमार से ली गई भेंट वार्ता सुनी। आपसे बातचीत कर रहे थे चंद्रमणि सिन्हा, और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त होता है।

मीडियावे बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं, अब आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

आज रात्रि 9:30 पर श्रोताओं हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जी हाँ, समय होगा 9:30। अंजुमन कार्यक्रम, क्षमा करें, उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:10 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सैयद शमीम अहमद से सलाम और नोहा सुनेंगे वासिफ अहमद से। मकाला प्रसारित होगा उर्दू नसर की तारीख में दास्तान की अहमियत। मकाला निगार होंगे मोहम्मद आरिफ हुसैन अंसारी। परिवार कल्याण ये कार्यक्रम हम आपके लेकर आएंगे 10:10 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीता केवलानी से, विषय होगा नवजात शिशु की देखभाल एवं समय पूर्व जन्म लेने वाले

0: बच्चों की सुरक्षा, यहाँ परिवार कल्याण कार्यक्रम सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम आओ साथ चलें का प्रसारण होगा सुबह 10:45 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा बिहार की बौद्धिक विरासत। दिन में 12:30 पर श्रोता सुनेंगे ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरनी। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीत, कलाकार होंगी सरोज कुमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 1:05 पर। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज संध्या 4:30 पर। खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा का प्रसारण किया जाएगा, समय होगा शाम 5:30। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे हमारे केंद्र से शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, कलाकार होंगे शैलेंद्र कुमार सिंह। कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7 से। गीत संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे हमारे केंद्र से, आपको बताते चलें अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हाल चाल और रसमंजरी फिल्म संगीत का ही अन्य कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। 7:15 पर प्रातः आप सुनेंगे कुछ गीत, कलाकार होंगे राजेश कुमार साह। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का शास्त्रीय गायन, आप सुनेंगे राग तोड़ी। फोन इन कार्यक्रम फरमाशी फिल्मी गीतों का आप सुनेंगे ऑन एयर फरमाइश, समय होगा सुबह 11:00। दिन में 12:00 आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ मगही लोकगीत, कलाकार होंगे चंद्रभूषण सिंह और सुगम संगीत में रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कुछ गजलें, कलाकार होंगे रूपम किशोर। कुछ और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे अपने केंद्र से दिन में 1:30 पर। इसके बाद दिन में 2:30 पर रात्रि 8:00 और रात 10:00 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी, ये पटना है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल

0: सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर श्रोता सुन रहे हैं हमारे केंद्र से इस समय आज की पहली सभा के कार्यक्रम

आज है 24 जून और आज के दिन मना रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परि दिवस। इस उपलक्ष में श्रोताओं, आज के दिन कल्पना, रचनात्मकता और थोड़ी सी जादुई शक्ति का संगम होता है।

आज के दिन की बात करें तो 24 जून को फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी और भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अदानी का भी जन्मदिन है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। गौतम अदानी की बात करें, भारतीय अरबपति, उद्योगपति और अदानी समूह के संस्थापक। मास्टर तारा सिंह का भी जन्म दिनवश आज 24 जून को मनाते हैं, प्रसिद्ध सिख नेता और स्वतंत्रता सेनानी। साथ ही अनिता देसाई, जो प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार हैं, उनका भी आज जन्मदिवस है।

तो श्रोताओं, बातें तो अभी और भी हैं। जी हाँ, 24 जून के ही दिन फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी, भारतीय अभिनेत्री सुमना चक्रवर्ती और महान स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरी चापेकर का भी जन्मदिन है। फिलहाल आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्वेता, तो आपको बताते चलें, 24 जून को ही ओंकारनाथ ठाकुर, भारत के शिक्षा मंत्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, उनका भी जन्मदिवस है। जी हाँ, 24 जून 1897 को आपका जन्म हुआ था। उनका संबंध ग्वालियर घराने से था। उन्होंने वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत के आचार्य पद की गरिमा में वृद्धि की थी। वे तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व थे।

उनका जन्म 24 जून 1897 को जगाज में हुआ था। और आपका देहावसान 29 दिसंबर 1967 में मुंबई में हुआ था। ओंकारनाथ ठाकुर को इनाम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हिंदुस्तानी संगीत वोकल में प्राप्त हुआ था। और अगली एक जानकारी में आपको बताएं, आज के दिन वराहगिरी वेंकटगिरी, जहां वीवीगिरी, भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति रहे थे। उनका जन्म ब्रह्मपुरा ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवीगिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उनका देहावसान 24 जून 1980 को चेन्नई में हो गया था। जानकारी की बातें कुछ और भी हैं, इस समय आइए सुनते हैं एक और

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम हालचाल का समय अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए प्रस्तुत है अब गीत। आइए सुनते हैं राजेश कुमार साहसे, हरवंश राय बच्चन का लिखा यह गीत।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं हमारे केंद्र से गीत कलाकार हैं राजेश कुमार साह। आइए सुनते हैं इसी आवाज में। अगला गीत है गोपाल सिंह नेपाली का लिखा।

अभी आप सुन रहे थे कुछ गीत कलाकार थे राजेश कुमार शाह। राजेश कुमार शाह के स्वर में गाए गोपाल सिंह नेपाली के इस गीत के साथ ही आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का शास्त्रीय गायन। प्रस्तुत है आपके गायन में राग तोड़ी।

Mama,

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में इस सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों

0: और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान की तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

0: उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लापान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the

0: It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. Center tightening norms for foreign contributions has been widely covered by all the dailies today. Hindustan Times writes, government issues new rules for Foreign Contribution Regulation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnEIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तरतावन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मज़म्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तरतावुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से ये आवाज़ कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से

0: बाहर भी लाख होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद असानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकतदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुताल्लिक शराकतदारी का एक अहम रोल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैन अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखाह तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई।

0: गई है। नीलामी की ये शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकतदारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तिजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। ये सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तिजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमेरिका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तिजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गौर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वैन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो अबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नवजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو

0: दो गोल करके पुर्तगाल को उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी

0: ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने आईएएस 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क़यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रर बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
4: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
3: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: Download Waves OTT app now and watch for free.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नेट, JRF या PhD की योग्यता प्राप्त हो। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 30 जून तक कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इन नए डिग्री महाविद्यालयों में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए IIT पटना के साथ टाई अप करने के निर्देश दिए हैं। पटना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। साथ ही श्री चौधरी ने राज्य के विद्यालयों और छात्रावासों में नामांकित इस वर्ग के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दिए जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी जांच की सुविधा पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाएगी। श्री ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान के तहत पूर्णिया जिले के कठौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाना और कृषि लागत को कम करना है।
1: स्वस्थ रहेगा तब ना हम स्वस्थ। कृषि विभाग ने ये समझा कि वैज्ञानिकों के साथ खेत में जाकर देखने, तो वो 2025 में हम लोगों ने किया। अब ये खेत बचाना है तो हर एक गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, पदाधिकारियों को देख रहे हैं। एक महीने का अभियान है, इसमें जो रिपोर्ट आएगा, रिसर्च होगा, उसके बाद फिर दूसरा अभियान चले।
0: कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने अपने कृषि नवाचारों और सफल प्रयोगों की भी जानकारी साझा की। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की उपस्थिति में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। इस टीम में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी और प्राधिकरण का एक नामित पदाधिकारी शामिल होगा। यह टीम अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और फायर रिस्पांस प्लान सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक AC लाउंज की सुविधा शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष AC लाउंज

0: गूंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी पार्टनर से संवाद भी किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने बताया कि बैठने की आरामदायक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाओं से युक्त ये लॉन्ज गिग वर्कर्स को गर्मी, बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम में राहत प्रदान करेंगे।
1: हर एक घर की जरूरतों को इनके माध्यम से पूरा किया जाता है। उनकी असुविधा को देखते हुए कि जितनी गर्मी पड़ रही है कि उनको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, एक स्थान दे, थोड़ा वो रेस्ट कर ले, तो पटना स्मार्ट सिटी ने ये सोचा। प्रयोग के तौर पर दो स्थानों पर हम लोगों ने शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मैं देखने के लिए आया। जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, आप लोगों से भी सुझाव मिलेंगे, तो इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
0: गौरतलब है कि पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इधर रेलवे ने कल भी 9 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। बिहार संग्रहालय ने पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक टिकटधारी आगंतुकों का रिकॉर्ड दर्ज किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की शासी निकाय की बैठक में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति नई दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना समेत देश भर में कुल 9 संग्रहालयों के विकास और स्थापना में अहम भूमिका निभा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक कलाओं से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के दो रुख देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर बिहार में मानसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे

0: तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट की संभावना है। वहीं इस अवधि में 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान बक्सर, गया जी और शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते कोसी और महानंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है। इधर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सहरसा के महिषी और सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं दरभंगा में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से खेधा पंचायत के कुछ गांवों का संपर्क पंचायत मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: श्री चौहान ने कहा कि कार्य योजना के तौर पर वैकल्पिक फसलों, कम अवधि वाली किस्मों, फसल विविधीकरण और तालाबों, जलाशयों, चेक डैम, फॉर्म बाउंड और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें 29 जून से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक चलेंगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के अनुसार प्रातःकालीन अदालत की बैठकें 27 जून तक ही होंगी। 29 जून से सभी अदालतों में दिवाकालीन बैठकें शुरू हो जाएंगी। गृह विभाग कारा ने पटना स्थित बेऊर जेल में भ्रष्टाचार और अराजकता के मामले में जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। इनमें एक कारा उपाधीक्षक, 4 सहायक अधीक्षक और 2 हवलदार शामिल हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से लगभग 23 किलो गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। यह ऑटो रिक्शा नेपाल से आ रहा था। पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी समेत 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई जबकि पत्नी को बचा लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। प्रभात खबर ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, SDPO और तत्कालीन थानेदार सहित अन्य पुलिस वालों पर हत्या की प्राथमिकी। दैनिक भास्कर लिखता है, CUET में 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, नेशनल हाईवे पर अब गाड़ी मरम्मत की मिलेगी सुविधा। अखबार लिखता है, NHAI ने दिया क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, पटना के 106 कोचिंग संस्थानों को बिहार अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस। आज अखबार के शब्द हैं, अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और अब अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

का एहतमाम किया, उस आफताबे इमाम।

اطاعت گزار سرور دین وفا شار اطاعت

जिंदगी को सलाम, कटाए बाजू मगर

दुनिया उसी सखी को सलाम किया अजल ने।

काबा बना कर देखिए, मिसले फर्जंदे अली गर्दन कटा कर देखिए, मिसले फर्जंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। आके करबल में कभी शेरस क्या है, हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन, हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन, जेर खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए, जेर खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए। आके करबल में कभी काबा बना कर देखिए। आज ऐसे समाज फरमाएंगे, कांप जाएंगे जमीनों आसमां दस्तो जबल, कांप जाएंगे जमीनों आसमां दस्तो जबल, याद में सरकार के आंसू बहा कर देखिए, याद में सरकार के आंसू बहा कर देखिए। आके करबल में कभी काबा बना कर देखिए। और ये शेर बतौर खास हजरात, आसमां का चांद भी इतना दरख्शां है कहां, आसमां का चांद भी इतना दरख्शां है कहां, आमना के चांद से आंखें मिला कर देखिए, आसमां का चांद भी इतना दरख्शां है कहां, आमना के चांद से आंखें मिला कर देखिए, आमना के चांद से। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि

काबा बना कर देखिए मिसले फर्जंदे अली, गर्दन कटा कर देखिए। नाथे पाक का मतलब समाज फरमाए, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया,

आलम का जब इंतखाब आ गया, रब्बे आलम का जब इंतखाब आ गया, जोल के सब दिए बुझ गए यक बयक, जोल

मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, रब्बे आलम का जब इंतखाब आ गया। और अगला शेर समाज फरमाए, अंबिया यूं तो आ

एक इस तरह भाग गया, इस तरह भाग गया। और शेर समाज फरमाइएगा कि पूछिए ना हलीमा की खुशबख्तियां, पूछिए ना हलीमा की खुशबख्तियां, गोद में उनके जब महताब आ गया, गोद में उनके जब महताब आ गया।

मुस्तफा बन के सबका जवाब आ गया। और आखिरी से समाज फरमाए, सारी कलियां उम्मीदों की खिलने लगी, सारी कलियां उम्मीदों की खिलने लगी, अर्शे आजम से जब एक गुलाब आ गया, अर्शे आजम से जब एक गुलाब

0: आ गया रब्बे आलम का जबिन तकाब आ गया मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया।
1: बज़ मौसिकी में आप महजूज हो रहे थे नातिया कलाम से, पेश कर रहे थे जनाब गुलाम समदानी। अगली पेशकश में अपनी नाते पाक पेश कर रहे हैं जनाब सदर आलम आपकी समातों के हवाले।
2: सरवरे दी शह अबरार रसूले अरबी

صاف لفظوں میں احادیث میں مرقوم ہے یہ.

0: में जब उठा ए फरिश्ते मुझे, कब्र में जब उठा ए फरिश्ते मुझे, गुनगुनाता रहूं मैं कलाम आपका।
1: सामीन बद्र मौसीकी में आप महसूस हो रहे थे नात पाक से। नात पेश कर रहे थे जनाब सदर आलम। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अब यहीं अख्तिताम पज़ीर हुआ जाता है। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडिया पे बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अलीजा पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी।

फैसला कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये गीत था श्रोताओं जिसे हमने लिया था फिल्म बागी से। कलाकार थे मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह और गीत में साथ था रोज किल्ला का।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ। लीजिए पेश है दो गाना किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया हुआ, फिल्म का नाम हीरा पन्ना।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पूछूंगा तुमसे, पूछूंगा तुमसे बात, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास।
1: दो चोर, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाया गाना। गीत में किशोर कुमार का साथ दिया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने, आप अगर प्रेम में पड़े हैं तो पाना खोना एक तरफा दो तरफा को कीजिए एक तरफ, और खुश हो लीजिए कि आपके पास एक दिल है। आइए सुनते हैं इस वक्त सुनिधि चौहान को साथियों के साथ, जिसे मिल गया फिल्म नाम से।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

0: किशोर कुमार लता मंगेशकर के गाए इस दो गाने के साथ ही, जिसे मिल गया था फिल्म चरस से, आज का फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त हुआ।
1: चलो
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार कल्याण। श्रोताओं आज लीजिए, इसमें प्रस्तुत है डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। विषय है नवजात शिशु की देखभाल और सावधानियां।
2: श्रोताओं नमस्कार, परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में है पटना के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, नवजात शिशु जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि उनकी देखभाल तो 9 माह जो है गर्भवती महिला और माँ जो है वो करती ही है, थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी होती है जब उनका जन्म होता है, तो उनकी देखभाल संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो हम शुरुआत करें, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके पोषण संबंधित उनकी क्या क्या ख्याल रखनी चाहिए?
3: जी, सबसे जरूरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे जरूरी है कि बच्चे को माँ का दूध मिले और जितना जल्दी मिले। हमेशा बोला जाता है, आम श्रोता हमेशा सरकार के तरफ से भी उसका एडवर्टीजमेंट पर प्रचार प्रसार होते रहता है
2: जी,
3: कि नवजात शिशु को माँ का पीला गाढ़ा दूध तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उसमें बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने वाले तत्व होते हैं, बच्चे को गर्म रखने वाले तत्व होते हैं, बच्चे को न्यूट्रिशन देने वाले तत्व होते
2: जी,
3: हैं। तो अगर वो गाढ़ा पीला दूध बच्चे को जन्म होते ही नहीं मिलता है तो बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
2: खासकर जो गाँव और सुदूर क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जैसे संस्थागत प्रसव नहीं होता है और लोगों में जानकारी नहीं होती है, तो वो जो पहला दूध होता है माँ का पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम जिसमें होता है, वो नहीं बच्चे ले पाते हैं, तो उससे कई चीजों से बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनमें क्षमता होती है इम्यूनिटी वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो नवजात शिशु के लिए जो पहला जो पोषण के लिए कई बार हम लोग कहते हैं दूध कितना महत्वपूर्ण है और कितने समय तक उनको लगातार दूध पे ही रखना चाहिए,
3: ये सबसे पहले जानना है कि जहाँ भी डिलीवरी हो रही है, शहर में हो रही है, गांव में हो रही है, ऑपरेशन से हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है, कोशिश करना है कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके माँ का दूध देना है। सिजेरियन वाले ऑपरेशन वाले बच्चों में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसा मना नहीं है कि नहीं देना है, सभी बच्चे को जितना जल्दी हो सके दे सकते हैं। और जब बच्चा एक बार दूध पीने लगता है तो उसको हर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर में दूध पिलाना है बच्चे को, और देर तक पिलाना है, 10 मिनट 15 मिनट पिलाना है, ताकि पूरा तत्व जो माँ के दूध में मिलता है वो पूरा तत्व मिले। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को 5 मिनट के लिए माँ पिलाई और फिर छोड़ दी, तो बच्चे को सिर्फ शुरू का दूध का पार जो तत्व होता है मिलता है जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, और जो बाद में जो दूध आता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है जो बच्चे को न्यूट्रिशन और गर्मी देती है। तो अगर बार बार 5-5 मिनट पिलाएंगे तो बच्चा हर थोड़ी देर में भूखा होकर रोएगा और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वेट भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो हमारा सलाह रहता है कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पे एक बार अच्छे से दूध पिलाएं, और 10 से 15 मिनट तक दूध पिलाने के बाद उसको अच्छे से ढकार दिला के फिर सुलाएं, और ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि बच्चा अच्छे से सोएगा भी और उसका वेट भी अच्छा बढ़ेगा।
2: जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बच्चे को काफी देर तक दूध पिलाएं, ऐसा नहीं कि 5

0: मिनट आप पिला रहे हैं, तो इससे आवश्यक जो चीजें जो बाद में आती हैं, काफी उसमें
1: तत्व
0: तत्व
1: जो
0: होते हैं, वो उनसे बच्चे जो हैं वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ के दूध पर ही रखें, ऐसा क्यों?
1: बच्चों का जो इम्यूनिटी रहता है, जो गट का बनावट रहता है, अभी प्री मेच्योर रहता है, मतलब वो
0: जी
1: इन्वायरमेंट के लिए नहीं रेडी हैं। उनका जो पेट का जो लेयर्स है वो उतना डेवलप नहीं रहता है,
0: जी
1: तो अगर बाहर से कुछ भी देंगे तो उसमें जाके वो इन्फेक्शन कराने का चांसेस रहता है। दूसरा कि उनका किडनी भी उतना अभी मेच्योर नहीं रहता है,
0: जी जी
1: तो अगर गाय का दूध देते हैं या बाहर से पानी देते हैं या जो दूध मिल रहा है वो कैसा है, बहुत सारी बातें हैं आजकल,
0: बिल्कुल
1: तो वो जाएगा जब पेट में बच्चे को, तो उसके किडनी पे असर डालेगा। इसीलिए बच्चों को जो नेचुरल भगवान ने ऊपर जो बनाया है वो दूध जो है वो बच्चों के लिए ही बनाया है, और 6 महीने तक अगर बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पे रखा गया है तो देखा गया है, ऐसा स्टडी हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कि वो बच्चे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्वस्थ रहे हैं थ्रू आउट लाइफ।
0: जी, तो माँ का दूध 6 महीने के लिए बिल्कुल बच्चे के लिए पर्याप्त है, सभी प्रकार के पोषण युक्त हैं, तो आप निश्चित रूप से बिना किसी झिझक के 6 महीने तक आप जी
1: इसमें एक और बात करना चाहिए, बहुत लोग इसमें ये सोचते हैं कि गर्मी का मौसम है, पानी की कमी हो जाएगी, बच्चे
0: जी
1: को
0: जी
1: ऊपर से पानी पिलाना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो दूध पी रहा है बच्चा माँ का, उसमें भी पानी है, ज़्यादातर तो
0: बिल्कुल
1: पानी ही है, बाकी तत्व तो भी हैं, तो आप उसी को पानी मानिए। अगर बच्चा लग रहा है कि कम पेशाब कर रहा है, मतलब उसको और दूध की
0: दूध
1: आवश्यकता
0: की
1: है, तो
0: आवश्यकता
1: उसको दूध और पिलाइए, पानी पिलाने की कोई
0: कोई
1: आवश्यकता नहीं,
0: आवश्यक, कहने का मतलब है कि आप केवल और केवल
1: दूध
0: माँ का
1: पिलाएं।
0: दूध,
1: जी
0: इससे बच्चा आपका तंदुरुस्त भी होगा, उसके जो सर्वांगीण विकास है हर प्रकार के अंगों का भी विकास होगा, डेवलप होगा, और किसी प्रकार का कोई संक्रमण भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, साफ सफाई की बात करें, एक नवजात शिशु है उसके लिए बहुत जरूरी है कि साफ सफाई संबंधित देखभाल हो, तो एक नवजात शिशु को सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: जी सबसे पहले ये जानना है कि जो नवजात शिशु है वो हमसे अलग है, उसका अपना अलग इम्यूनिटी होता है,
0: जी
1: जो कि काफ़ी सेंसिटिव है बच्चा, थोड़ा भी अगर इन्फेक्शन उनको लगता है तो काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उनको भर्ती करना पड़ जाता है,
0: बिल्कुल
1: और वो उनके शरीर पे काफ़ी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और उनको अभी उनका लाइफ शुरू हुआ है,
0: जी
1: वहाँ से वो प्रभाव पूरे जीवन भर उसको रहना है, तो
0: जी
1: फिर इसीलिए अभी जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कोशिश करना है कि शुरू के पहला सप्ताह तो बिल्कुल ही टच ना करें, ज़रूरत नहीं पड़ रहा तो नहीं टच करना है, कम से कम लोग टच करें, दूर से देखें, किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो वो उनके कमरे में भी ना जाएं जहां बच्चा वो है,
0: जी जी
1: और जो केयर दे रहे हैं, जैसे माँ दे रही हैं, दादी दे रही हैं, या कोई भी एक साथ में अगर हेल्प में कर रहे हैं बच्चे को केयर में, तो वो हाथ अच्छे से साबुन से वॉश कर लें, तो जो इन्फेक्शन का खतरा है काफ़ी कम हो जाता है।
0: जी काफ़ी डिलिकेट होते हैं बच्चे, तो
1: जी
0: निश्चित रूप से इसका
1: जी
0: ख्याल रखना
1: हैंड
0: बहुत
1: वॉशिंग सबसे
0: बहुत
1: इम्पोर्टेंट है।
0: ज़रूरी है। नहलाने की कई बार बात होते हैं, गांव घरों में बच्चों को नहला देते हैं, तो एक शिशु को, नवजात शिशु को कितनी बार नहलाना चाहिए,
1: जी
0: कब कब नहलाना
1: शुरू के
0: चाहिए?
1: सप्ताह में हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को कपड़े से पोंछ दीजिए,
0: जी,
1: शुरू के सप्ताह में थोड़ा सा बच्चे को थर्मोस्टेटिक इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उसमें बच्चे को नहलाने के लिए ऐसे मना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे तो भी वो साफ़ हो जाएंगे, सुबह शाम एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ के कपड़ा बदल दीजिए तो वो भी ठीक है, और एक सप्ताह के बाद आप डेली नहला सकते हैं उनको, लेकिन नहलाना है तो पानी सुसुम रहे, रूम बंद रहे, यानी कि खुले में
0: खुले
1: नहला
0: रहे।
1: रहे हैं, हवा
0: जी
1: चल
0: जी
1: रहा है, नहलाने के बाद उसको तुरंत से तुरंत पोंछ के कपड़े में फिर सूखे कपड़े में लपेट दें,
0: लपेट दें।
1: नहलाने में खास ध्यान देना है और
0: जी
1: जाड़े के मौसम में विशेष तौर पर।
0: जी बिल्कुल, तो साफ सफाई का ख्याल रखना है, पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। कई बार बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर अभी का समय है, लोग डायपर का इस्तेमाल कर लेते हैं,
1: जी
0: तो ये कितना सुरक्षित है?
1: जी ऐसे तो आजकल का जो मतलब भागदौड़ का ज़िंदगी है और वर्किंग लोग हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसका नेसेसिटी भी हो गया है, लेकिन जितना अवॉइड कर सके अवॉइड करेंगे,
0: जी
1: सॉफ्ट अगर कॉटन के कपड़ों से कवर रखते हैं तो थोड़ा सा वहाँ हवा जाते रहता है, तो थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, तो कोशिश करें कि डायपर ना पहनना है, अगर पहनाना पड़ रहा तो गीला ना रहे, फ्रीक्वेंट चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसमें इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो कोशिश करें कि ढेर सारे
0: कपड़ों
1: कॉटन के
0: का,
1: कपड़े का
0: कॉटन
1: बना लें
0: कपड़े, जी
1: और लगातार बदलते
0: जो
1: रहें।
0: पुराने कॉटन के कपड़े
1: जी जी
0: होते हैं
1: साफ़
0: यूज्ड,
1: सुथरे
0: जी
1: होने
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: उन अच्छे से साफ करके
1: जी
0: उसका
1: नहीं तो
0: इस्तेमाल
1: वो
0: कर सकते
1: लोकल
0: हैं।
1: इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, बार
0: जी
1: बार
0: जी
1: बच्चे तो हर थोड़ी देर पे सुसु करेंगे,
0: जी
1: पॉटी करेंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो गीला रहता है और डायपर के अंदर है तो पता
0: तो
1: नहीं चल रहा
0: पता
1: है,
0: नहीं
1: तो उसके
0: चलता,
1: कारण से वहाँ रेडनेस आ जाती है, हमेशा कंप्लेन
0: रैशेज आ
1: लेके आते
0: जाते
1: हैं
0: हैं।
1: कि
0: जी जी
1: रैसेज हो रहा है, तो
0: जी
1: उससे बचने के लिए कॉटन का कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हर बच्चे को जैसे कि हर 2 घंटे पर दूध पिलाना है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर सोते हुए रहते
1: सोए
0: हैं,
1: रहते हैं
0: तो
1: जी,
0: उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बच्चे को जैसे एक बार अच्छे से दूध पी लिया तो 2 घंटा सोएगा,
0: जी
1: लेकिन जब 2 घंटे

0: घंटा ढाई घंटा हो गया, मैक्सिमम 3 घंटे से ज़्यादा सोने नहीं देना उनको, उठा के फीडिंग करा लेना है, दूध पिला देना है अच्छे से, फिर ढकार दिला के फिर सोएंगे तो सुला
1: फिर
0: देना है।
1: सोना चाहे तो सुला
0: हाँ, लेकिन
1: दीजिए।
0: ये नहीं कि बच्चा सोया है तो ये नहीं सोचें कि बच्चा सोया है जब उठेगा तब दूध पिलाएंगे, तब उसमें बहुत बार क्या होता है कि बच्चों में शुगर की कमी हो जाती है तो वो सुस्त सोया पड़ा रहता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें वो दिक्कत
1: तो इस
0: होती
1: बात
0: है।
1: का भी ध्यान रखना है कि अगर 2 ढाई घंटे 3 घंटे मैक्सिमम हो रहा है तो आप निश्चित रूप से उन्हें उठाकर
0: उठा के
1: पिलाकर
0: रात
1: फिर
0: में,
1: अगर
0: हाँ
1: सोना
0: जी
1: चाहे तो उसने सुला दे। अब बच्चों के टीकाकरण संबंधी, जब बच्चा जन्म लेता है तो उनकी सुरक्षा के लिए कई प्रकार के टीकाकरण किए जाते हैं, तो कौन कौन से टीकाकरण कराना आवश्यक है?
0: ऐसे तो जो दो शेड्यूल है हमारा, एक तो गवर्नमेंट का शेड्यूल है और एक हमारा IAP का शेड्यूल है।
1: जी
0: तो जो गवर्नमेंट में फॉलो हो रहा है वो बेसिक, जो हमारा वैक्सीनेशन एकदम ही ज़रूरी है, ऐसे ज़रूरी सारे वैक्सीन हैं,
1: जी
0: सभी का अपना एक एडिशनल बेनिफिट है,
1: जी जी
0: लेकिन सब चीज़ देखना है, इकोनॉमी भी देखना है, पेशेंट दिला पाता है नहीं दिला पाता, ये सब भी देखना है। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट ने जो, और गवर्नमेंट कितना सप्लाई कर सकता है उसके आधार पे गवर्नमेंट ने कुछ वैक्सीन्स का लिस्ट बनाया है, उसको दिलाना है, जो वो शेड्यूल बना है उसके आधार पे। उसमें
1: जी
0: वो
1: सिंसियर है वो।
0: जन्म के समय का वैक्सीन रहता है, जैसे कि BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, ये सभी बच्चों को पड़ता ही पड़ता है,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: कहीं भी जन्म हो लगवाना ही लगवाना है। फिर आगे डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस का, ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे पड़ता है। उसके आगे फिर ऐसे शेड्यूल पूरा बना हुआ है,
1: जी जी
0: तो वो पूरे शेड्यूल में आपको कोशिश करना है कि बच्चे को मैक्सिमम वैक्सीन लगे।
1: लग जाए।
0: अगर आप सक्षम है तो लगा सकते हैं, जो बच जाते हैं गवर्नमेंट में वो प्राइवेट में। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लगा सकते, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट में जो मिल रहे हैं वो ज़रूर लगवाएं,
1: जरूर लगवा
0: ये
1: लें।
0: नहीं कि छूट जाए।
1: बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, संस्थागत प्रसव अगर होता है तो एक लिस्ट उनको टीकाकरण का दिया ही
0: जी
1: जाता है
0: जी जी
1: और जो उपलब्ध होता है उन्हें लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टीकाकरण छूट जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: लग रहा है कि ये चीज़ छूट गया है तो आगे लगवा लेना है, जब भी याद आया कि हाँ
1: जी
0: हमारा
1: जी
0: छूटा हुआ है
1: जी
0: ये वैक्सीन, तो डॉक्टर से मिलना है, उसमें वो बताएंगे कि कब कैसे इसको रिशेड्यूल किया जाएगा वैक्सीन को,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: जो
1: जी
0: ज़रूरी है वो लगवाना है।
1: जी अगर छूटता है
0: हाँ
1: तो आप अपने जो
0: जी
1: चिकित्सक उनसे सलाह लेंगे तो उस हिसाब से वो सुझाव दे देते हैं।
0: जी
1: कई बार छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं, टीकाकरण लगता है उनको बुखार आ जाता है, तो
0: जी
1: इस समय माँ घबरा जाती है बच्चे के, तो उस स्थिति में ये क्या ये समान लक्षण है या फिर?
0: सामान्य लक्षण है, 1-2 दिन आ सकता है बुखार,
1: जी जी
0: ख़ासतौर पर DPT वाला जब पड़ता है तो उसमें आता है, तो उसमें घबराना नहीं है, बुखार की दवा देनी है और कपड़े से भिंगा के पोंछना है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो,
1: जी जी
0: और 24 से 48 घंटे में बुखार चला जाता है। अगर लंबा बुखार रह रहा है तो जाके डॉक्टर से मिलना है।
1: छोटे बच्चे कई बार वो रोते हैं और माँ को पता नहीं चल पाता उनकी माँ को,
0: जी
1: तो क्यों, क्या कारण है और कैसे इसको पहचाने कि
0: जी
1: बच्चा किस
0: जब
1: वजह से रो
0: भी
1: रहा
0: जहाँ
1: है?
0: जी जब भी बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले तो देखना है कि बच्चे को भूख न लगी हो,
1: जी
0: पहला काम है कि फीड कराना। अगर भूख दूध पिला दिया फिर भी बच्चा रो रहा है तो
1: जी
0: फिर देखना है कि बच्चा को कहीं पोटी सुसु किया हो, गीला हो, किसी
1: जी
0: डिस्कम्फर्ट से ठंडा लग रहा हो या किसी तरह का उसको बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा तो वो रो के ही बताएगा,
1: जी जी
0: तो पहले ये सब चीज़ों को देख लेना है। इसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तब फिर डॉक्टर से मिलना है और दिखाना है बच्चे को, हो सकता है बच्चे को पेट में दर्द हो, हो
1: जी
0: सकता है
1: जी
0: बच्चे को कान में दर्द हो, तो ये सब चीज़ें रहती हैं बच्चों में, तो इसके लिए बच्चे को डॉक्टर से संपर्क करके ना
1: जब
0: है।
1: बच्चा जन्म लेता है तो नियमित जांच की बात करें, टीकाकरण के बाद
0: जी
1: जांच नियमित कब कब कराना चाहिए? आवश्यक है नियमित जांच कराना या फिर बच्चे अगर स्वस्थ हैं
0: कुछ
1: तो?
0: जांचें जो हैं आजकल कंपलसरी हो गई हैं, जैसे कि जन्मजात कुछ रोगों को पता करने के लिए हम लोग 72 घंटे पे थायराइड जैसे है
1: जी
0: कि थायराइड की जांच बच्चों में भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थायराइड का, मदर को थायराइड है या ऐसे भी
1: जी
0: बच्चे को थायराइड का लेवल कम रहता है, तो अगर वो पकड़ने में देरी होगी तो वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, जो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, तो अब आजकल यूनिवर्सल ये रूल बन रहा है कि बच्चों को थायराइड का जांच कराया जाए, बच्चों
1: जी
0: के कान का जांच कराया जाए, ये सब देखने के लिए इसलिए देखा जा रहा है कि एक भी बच्चा छूट है ना,
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: भी बच्चा अगर कान की कमी में, सुनने में कमी है तो वो पकड़ में आ जाए, इसीलिए सारे बच्चों को कराया जा रहा
1: तो मतलब जन्म के बाद ये कुछ
0: है। जी
1: टीकाकरण और जांच बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब जहाँ भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ टीकाकरण कराएं, छूटने के बाद भी कराएं और जांच कराएं। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, सावधानी और विशेष ध्यान नवजात शिशु के लिए क्या रखना चाहिए उनको?
0: अभिभावकों से अनुरोध है कि जो छोटे बच्चे हैं काफ़ी नाजुक हैं, उनका खास ख्याल रखें, जैसा मैंने अभी बताया कि समय समय पे दूध पिलाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, समय समय पे टीकाकरण कराएं, और अननेसेसरी छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल न दें, छोटे बच्चों में ज़्यादा दवा देना हमेशा हानिकारक होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और नवजात शिशुओं की देखभाल

0: सुझाव हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता। आपसे बातचीत कर रहे थे धर्मेंद्र राठौर। विषय था नवजात शिशु की देखभाल और सावधानियां। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम परिवार कल्याण अब यहीं समाप्त होता है। हेलो,
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ सास चलें। कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की बौद्धिक विरासत।
8: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहाँ हुई, आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में यानी बोध गया में।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात न कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहां पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना अगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था, और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो

तारीफ की है उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी यह स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी रही है। पटना के पास तारेगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत

0: को सिर्फ याद न करें बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज का विषय था बिहार की बौद्धिक विरासत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेब 413.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स तो आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। ऑन एयर फरमाइश।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
1: हम नीलू बात कर रहे हैं, मधुबनी प्रखंड खुटौना से। बहुत
0: आज
1: अरसे के बाद कॉल किए हैं हम, बहुत पहले कॉल किया था।
0: बहुत पहले
1: हाँ।
0: बहुत पहले यानी सालों पहले।
1: सालों पहले बीच में
0: तो
1: समझिए, इतना अरसा बीच में निकला, शादी हुई, बच्चे हुए, घर द्वार सब उलझ के रह गए थे।
0: और हमें भूल गए
1: नहीं सर भूले नहीं, दोबारा कॉल किए ना।
0: बहुत अच्छा लगा इतने लंबे अंतराल के बाद ने याद रखा और कॉल किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बताइए कि इतने दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपके लाइफ में।
1: डेवलपमेंट क्या होगा सर, प्राइवेट जॉब करते थे वो छोड़ दिए, शादी हो गई, अपना नया फैमिली नई दुनिया लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।
0: शहर बदल गया या उसी शहर में है।
1: शहर बदल गया, सीतामढ़ी शादी हुई है मेरी।
0: अच्छा चलिए, मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
1: मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
0: ठीक है ठीक है, चलिए उत्तरी बिहार में रहे।
1: हाँ।
0: तो ये बच्चे कितने हैं अभी आपके।
1: जी एक ही बेटी हुई है अभी,
0: कितनी बड़ी है।
1: सिर्फ 4 महीने की।
0: ओह अच्छा, तो बहुत छोटी है, अभी अभी आप माँ बनी हैं। चलिए आपको
1: मदर।
0: बहुत सारी बधाई, छोटी सी प्यारी सी बच्ची आपकी गोद में आई, बहुत अच्छा। पूरे परिवार में किलकारी गूंजी होगी, बच्ची की खुशियाँ होंगी अभी।
1: हाँ।
0: तो फिर अब क्या क्या हो रहा है।
1: अब अभी तो कुछ दिन घूमने फिरने मायके आए हुए हैं, और हम अपने जनरेशन में सबसे बड़े औलाद होने की वजह से पहली बच्ची है। हाँ।
0: अच्छा, तो इसको भी वही प्यार मिल रहा होगा, ये बल्कि ज्यादा मिल रहा होगा जो आपको मिला।
1: हाँ, क्योंकि इस जनरेशन की पहली औलाद है ये।
0: जी, तो सबके हाथों हाथ इधर उधर बच्चे की खुशियाँ बांट रहे
1: हाँ
0: होंगे
1: ऐसा ही कुछ।
0: पूरा परिवार
1: हाँ
0: मिलकर। बहुत अच्छा, समझ सकते हैं।
1: हाँ
0: तो चलिए, इसमें आप मजबूत होंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही होंगी और आगे भी निभाइएगा।
1: पक्का।
0: ये बहुत अच्छा काम किया आपने, रेडियो सुन रही हैं और कॉल किया आपने। आपको क्या सुनने का मन है आज।
1: क्या सुनने का मन है, वो एक गाना था बहुत मतलब कन्हैया, कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे, था ना।
2: सत्य भा

0: किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी के रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: तुम्हारी नहीं कन्हैया।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं?
1: गुरुआ से बोल रहे हैं सर, गया जिला से,
0: क्या नाम हुआ आपका?
1: ललन चौधरी।
0: ललन चौधरी जी, स्वागत है आपका। क्या हालचाल है बताइए, क्या हो रहा है उधर?
1: हाल चाल तो ठीक है सर। अभी तो सर 4 महीना ड्यूटी मिलता है नहर में, और बाकी दिन बैठ जाते हैं सर।
0: तो 8 महीना फिर क्या करते हैं फिर ऐसे?

0: कैसे चलता होगा
1: 8 महीना सर रोजगार अपना करते हैं।
0: हाँ यही कह रहे हैं कि 8 महीना अपना कुछ ना रोजगार तो होता होगा।
1: हाँ नीरा वाला रोजगार है सर, नीरा के रोजगार है
0: अच्छा
1: नीरा के
0: अच्छा
1: साइड पे।
0: नीरा नीरा। अच्छा उसमें कुछ सरकारी छूट और पैसे वगैरह कुछ मिलते हैं क्या आपको, या कहाँ उसको बेचते हैं?
1: जी हाँ सर मिलता है।
0: मिलता है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका ये पुश्तैनी व्यवसाय है मेरा ख्याल है, और आप कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें आप लोग पारंगत होते हैं, पेड़ पर उतनी ऊंचाई पर आपके अलावा और कोई नहीं चढ़ पाएगा
1: जी हाँ सर
0: तो ठीक है, इस रोजगार से आप जो कमाई कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलाव लाना चाहिए, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ कुछ और भी
1: हाँ
0: सोचिए
1: सर
0: कीजिए ताकि आपके परिवार को और बेहतर अवसर मिल सके। आज
1: हाँ
0: आपने
1: सर
0: फोन किया है, बताइए क्या
1: ये
0: सुनवाएं आपको।
1: हमारा सर मेरा नाम है चमेली वाला, सुनवाइएगा सर।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार सर, मैं करण कुमार बात कर रहा हूँ बेतिया से।
0: जी करण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है बताएं।
1: ठीक है सर, अपना बताइए।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त।
1: हम बैठे हैं, गर्मी का मौसम बहुत है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है।
0: हाँ तो ये तो अच्छी बात है, हमारी फसलें, हमारी जमीन, हमारे पेड़ और इस मौसम के जो फल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे गर्मी की वजह से ही। तो इसका तो मजा लेना चाहिए मेरा ख्याल है। जी
1: एक गाना सुनना है, मुन्ना भाई फिल्म का गाना है।
2: ए भाई भाई, बहुत खुश लग रहा है भाई। बात क्या है ए भाई, हुआ क्या ए भाई, हुआ क्या ए भाई, बोलना यार हुआ क्या।
3: कट चप्पल
2: ए भाई,

0: भाई रिवर्स में क्या कुछ स्टोरी सुना है, स्टार्टिंग से सुना। अभी वो घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: आज ड्राइवर ने मिरर में देखा नहीं ना, कैसा मैनेज किया?
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सुसु करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे कि थर।
0: ऐसा हो गया भाई?

शेर को मामू बोल डाला, गिर गया वो। डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर के अरे कितना मजा आया। ऐसा हो गया भाई।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना
1: नमस्कार सर।
0: नाम पता बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: सर बिहार के नदाव गांव से सर बोल रहे हैं। एक बार और कॉल किए थे सर, अनिल कुमार यादव
0: जी। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: जी सर, हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं सर, स्कूल पर। एक स्कूल है एक बक्सर स्टेशन से थोड़ा दूर, 15 किलोमीटर। यहाँ पे सर ड्राइवर लोग जो है ना सर, जो दोस्त है, थोड़ा कॉल करिएगा, हमारा नाम भी लीजिएगा।
0: कहाँ पर?
1: सब यहीं पे है सर, स्कूल में है सर। तो स्कूल में ड्राइवर लोग रहते हैं, स्कूल वाली गाड़ी जो चलाते हैं,
0: हाँ,
1: वो लोग भी।

0: तो वो लोग बोले कि मेरा नाम भी थोड़ा हेलो करना, इसमें नाम लीजिएगा हम लोगों का भी।
1: अच्छा,
0: थोड़ा हम नाम ले लेते हैं उन लोगों का।
1: हाँ तो ठीक है, लेकिन उनको भी कहिएगा कि वो भी आपके मोबाइल से ही सही या अपने मोबाइल से कॉल करेंगे, और अभी उनका नाम ले सकते हैं, ले लीजिए और बताइए फिर।
0: कमलेश यादव, बर्तेश यादव, मंटू, अजीत यादव, तूफानी, बहादुर और सुनील यादव, जो कि बनारस में रहते हैं, मेरे प्रिय दोस्त हैं सर। और मेरी पत्नी का नाम रूबी कुमारी, बच्चा अंकुश और सत्यम।
1: ये सब मिलकर क्या सुनना चाहते हैं?
0: मुझे तो भी मोहब्बत का सारा मिल गया होता है, यहीं का ना सुनवा दीजिएगा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी,
1: नवादा जिला से बोल रहे हैं।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हम मोहम्मद अजीज बोल रहे हैं। हम बहुत दिनों से लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था। आज कैसे कैसे हमारा कॉल लग गया।
0: आपके लगाने से ही लगा है कॉल? आपने प्रयास किया, लग गया, और अब कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए।
1: नहीं, सही का अच्छा लग रहा हमको, बात करने में अच्छा लग रहा है। हम विकलांग है।
0: अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
1: हम कुछ नहीं करते, हम घर पर बैठते रहते, दिन भर कार्यक्रम सुनते हैं, रात में भी सफल सुनते हैं, और बहुत प्रोग्राम सुनते हैं, समाचार सुनते हैं। 7:30 बजे समाचार सुनते थे, 7:45 बजे वाला समाचार सुनते हैं। आइए,
0: ठीक है, आज क्या सुनेंगे बताइए।
1: आज ये सुना दीजिए, मोहम्मद रफी का, जो धीवी का चांद हो, आज ताब हो।

0: नमस्कार संजय जी। हम
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे
0: जिंदा
1: हैं, नाम पता बताएं।
0: बहुत दिन पर फोन लगा है, आज बहुत दिन पर फोन लगा है, पहली बार का फोन लगा है सर।
1: जी, स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए।
0: मेरा नाम रितेश कुमार का है, गंज विद्यापति मऊ बाजार विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर से बोल रहे हैं। खुश रखने के लिए रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म उलिम सब सुनते रहते हैं।
1: जी, बहुत अच्छा।
0: हम गाना सुनना चाहते हैं फिल्म भक्ति भक्ति वाला ही गीत। हम सोचते हैं भक्ति भगवान पर ही विश्वास रखते हैं, भगवान वाला ही गाना सुनना चाहते हैं। ये भक्ति गाना ये है जो सच पूछो जहाँ वहाँ वहाँ संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ।

0: ऑनियर फरमाइश
1: सत्यनारायण मंडल लाखोते से बोल रहे हैं
0: जी। मंडल जी स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, समाचार बढ़िया है।
0: और क्या हो रहा है?
1: काम हो रहा है, अभी ऐसे बगीचा में बैठे हुए हैं यार। क्या
0: काम कुछ नहीं हो रहा है अभी?
1: नहीं, काम कुछ नहीं। हमको सोनमा के पिंजरा में बंद भेजे, हाय राम, ये गाना जरा सुना दीजिएगा।

0: हेलो सर।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: नमस्ते सर।
1: बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी सोनू कुमार जी, कैसे हैं आप?
0: जी हम अच्छे हैं सर, आपसे पहले भी बात हो चुका है।
1: जी
0: सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
1: जी तो बताइए अपने बारे में, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आगे की योजना है, बताइए।
0: डर लग रहा है बोलने में।
1: डरने की क्या बात है, आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो हम जान लें आपकी।
0: कुछ नहीं सर, बस ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं गाती में बैठे बैठे।
1: आप विद्यार्थी हैं ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी?
0: जी करते हैं ना सर।
1: अच्छा, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ,
0: जी सर।
1: अभी अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे के जीवन में आपको आराम होगा। अभी अगर आप ठंडी ठंडी हवाएं और आराम के चक्कर में रहेंगे तो फिर आगे तपिश बर्दाश्त नहीं होती है बढ़ती उम्र में। अभी आप युवा हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अभी का कष्ट जो है वो झेल लेना चाहिए, बल्कि कष्ट कर लेना चाहिए, ठीक
0: जी
1: है,
0: सर,
1: जो भी कष्ट हो, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़िए और कुछ अपने बारे में सोचिए,
0: जी सर,
1: है ना? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कहा भी गया जो डर गया सो मर गया,
0: जी सर,
1: तो जब पहले ही मर जाएंगे तो फिर करेंगे क्या आगे, है ना? तो जीने की सोचिए, डर को दूर भगाइए, और दूसरी बात है कि डर के आगे जीत है।
0: जी सर।
1: चलिए क्या सुनेंगे बताइए।
0: नसीब फिल्म का गाना एक सुना दीजिए सर।
1: हाँ, जिंदगी इम्तिहान लेती है।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612222500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612222500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश।
1: और इस गीत के बाद ऑल इंडिया रेडियो।

0: बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मगही लोकगीत। कलाकार हैं चंद्रभूषण सिंह। इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पे विनोद कुमार, नाल पे हैं राजीव कुमार भारती और बांसुरी पे समीर कुमार।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मगही लोकगीत। कलाकार थे चंद्रभूषण सिंह। संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पे विनोद कुमार, नाल पे राजीव कुमार भारती और बांसुरी पे थे समीर कुमार।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घरनी। घरनी सुने वाला सखी सबके अर्चना के प्रणाम। कहीं कैसन बानी जा, गर्मी से त सब केहू परेशान बा, बाकी ए घड़ी आपन स्वास्थ्य के ध्यान राखे के बा। और स्वास्थ्य खातिर तो बुझी कि सब केहू ध्यान देवे करेला। कहल भी गइल बा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन के भी निवास होखेला। तो गर्मी बा तो अब जेकरा काम धंधा बा ऊ तो बाहर जेबे करी, और अगर बाहर जातनी तो सूती ढीला ढाला कपड़ा पहिर के जाई। सूती कपड़ा पसीना सोखेला और शरीर खातिर भी निमन रहेला। पसीना ढेर निकलेला तो शरीर में पानी के कमी हो जाला, तो हमेशा ध्यान से पानी पियत रहें। पसीना के जोरे खनिज लवण भी शरीर से निकलेला, तो नारियल पानी, आम के पन्ना, नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, सत्तू के शरबत ये सब पियत रहें, ताकि शरीर में पानी के और खनिज दोनों के कमी ना होखे। खान पान में विशेष ध्यान रखे के चाहिए। गर्मी में बसिया कुसिया खाना तो एकदम मत खाई। ताजा और सुपाच्य भोजन करी। तेल के छानल बघारल कम खाई। अकौड़ी पकौड़ी समोसा खाए में तो निमन लागेला, बाकी शरीर के नुकसान करेला तो तनी कम खाई। तेल मसाला वाला तकारी भी कम खाई। ए घड़ी नेनुआ कदुआ भेटेला, ई सब ई कुल तकारी खाई, काहे कि ई शरीर खातिर भी निमन बा और पानी के कमी भी ना होके देवे। ऐसे खीरा ककड़ी तरबूजा खरबूजा भी ए घड़ी खूब भेटाला, तो इहो कुल के सेवन खूब करी। दही के सेवन जरूर करी। बाहर निकली तो भर पेट खा पी के निकली। तेज घामा से बुखार, पेट खराब, उल्टी आदि बीमारी होखेला। और ज्यादा दिक्कत बुझाए तो डॉक्टर से जरूर दिखा ली। एक घड़ी कच्चा प्याज भी जरूर खाए के चाहे, ताकि घामा के असर कम हो। लैकन अब बड़ बुढ़ के ख्याल राखी। लैकन तो बुझे ले ना, स्कूल जाले आवे ले, तो उनकर विशेष ध्यान राखी। घामा में खेले लागे ले, सांझ के खेले जाई दीही। बूढ़ बाड़े तो हल्का सुपाच्य भोजन दीही। हल्का फुल्का व्यायाम करी और भोरे चाहे सांझ भैला पर टहली। बाहर निकली धूपा से जे बाचे वाला क्रीम रहेला वो अपना चमड़ी पर जरूर लगा ली ही। माथा झांप के आँख में रंगीन चश्मा जरूर पहन ली। रंगीन चश्मा देखी फैशन ना होखेला, ये आँख के तेज धूप में जे अल्ट्रा वायलेट किरण होखेला ओकरा से बचावेला। और अब बुझी कि इतना तो शरीर पर ध्यान देव ही पड़ी ना, तो ये गर्मी में तबीयत सबके गड़बड़ा जाला। तो अपन शरीर के तो अपने ध्यान रखे के बा, और हम महिला लोग इनके तो अपनो ध्यान रखे के बा, और अपना घर परिवार में जे भी पाड़े उनका भी ध्यान रखे के बा। और ये घड़ी ध्यान तो रखा तनी, लेकिन तनी मन के भी ध्यान रखे के चाहिए। तो मन कैसे खुश रही वो खातिर तो तनी गीत नाद आदमी सुनेला। तो चली हमू जाना तनी कि रवा सभी इंतजार कर रहा लोग अब गीत खातिर। तो चली सुनाओ तनी रवा सभी के सरोज कुमारी से ई गीत।

0: वाह, अभी हमने का एक गीत सुनने जा सरोज कुमारी जी से और इनका से हमने के आगे भी और एक गीत सुन अब जा और अब कुछ काम के बात हो जाए। तो रुआ सभी के एगो विशेष विषय पर वार्ता सुनवाई, महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग। वार्ता कारबारी डॉक्टर ज्योति सिन्हा, तो सुनी जाई वार्ता।
1: प्रकृति ने सभी महिलाओं को चुनौतियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता दी है। इस क्षमता का उपयोग कर सार्थक आजीविका पैदा करने एवं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में आज महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हैं। शहर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। वस्तुतः महिलाएं 80% कार्य करती हैं, परंतु पारिश्रमिक के हिसाब से यह कार्य रोजगार में गिना नहीं जाता। आम तौर पर प्रत्येक महिला के सामने घर एवं कार्यस्थल कैरियर के बीच सामंजस्य की समस्या आती है, परंतु घर बैठे कुछ ऐसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिसमें वे अपना समय परिवार को भी दे सकें, साथ ही साथ व्यवसाय भी स्थापित कर सकें। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार अलग-अलग हो सकते हैं। स्वरोजगार एवं उद्यम के लिए प्रशिक्षण लेने

की भी कई योजनाएं चलती हैं। इनमें विभिन्न संस्थानों अथवा केंद्रों द्वारा कृषि, बागवानी, प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, पर्यटन, आतिथ्य, आभूषण बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि घर अथवा आसपास नए रोजगार शुरू किए जा सकें। आज के दौर में बिहार की कृषि महिलाओं के हाथ में आने लगी है। कृषि छोड़कर अन्य नौकरी के लिए गांवों से पलायन एक मुख्य समस्या बन गई है। 70% ग्रामीण महिलाओं के ऊपर परिवार एवं कृषि प्रबंध दोनों ही मुख्य जिम्मेदार बन गई है। इससे वे महिलाएं जो कि पशुपालन, बकरी, मुर्गी, मत्स्य अथवा अन्य कृषि उद्योगों में भी अपना समय दे रही हैं। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनमें स्वावलंबन, निर्णय लेने की क्षमता, अद्यतन जानकारी एवं तकनीक की पहुंच अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीज गिराने से लेकर फसल काटने, सुखाने, भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं प्रयोग के समय तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी महिलाओं की है। आज़ादी के तुरंत बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि उद्यमिता विकास द्वारा समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृषि में महिलाओं के अनिवार्य सहयोग को महसूस करते हुए ऐसे उद्यमों को पहचाना जाए जिसमें महिलाएं बच्चों एवं परिवार की उचित देखभाल के साथ गृह व्यवस्था, कृषि कार्य, रोजगार सृजन एवं उद्यमिता प्रबंधन के बीच ठीक ठाक सामंजस्य बना सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि की प्रगति एवं जीवन स्तर में सुधार एक दूसरे पर निर्भर है। वातावरण, तकनीक, उत्पादन प्रबंधन एवं प्रगति में सही तालमेल होना चाहिए। महिलाओं में दृढ़ता एवं स्वतंत्र निर्णय क्षमता विकसित होनी चाहिए। घरेलू एवं संसाधनों द्वारा उद्यमिता विकास के नए आधार खोजे जाएं एवं कम श्रम वाली तकनीक को बढ़ावा मिले। आज के बदलते परिवेश में महिला गोष्ठियों का आयोजन समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नई तकनीक एवं कृषि आधारित नए और लघु उद्योगों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जा रही है। महिलाओं के लिए जो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं, उन्हें कई तरह से विभाजित किया जा सकता है। इनमें से कुछ खाद्य आधारित कृषि उद्योग होते हैं और कुछ अखाद्य कृषि से संबंधित उद्योग होते हैं। खाद्य आधारित कृषि उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल एवं सब्जी उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बर्बादी अधिक होती है। भंडारण क्षमता न होने के कारण किसानों को कम दामों पर ही सब्जियों को बेचना पड़ता है। इसका निराकरण प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन द्वारा किया जा सकता है। फल एवं सब्जियों के मूल्यवर्धित उत्पाद सुखौता, पाउडर, अचार, जैम, सॉस, चिप्स, मार्मलेड, चटनी इत्यादि बनाई जा सकती है। आजकल प्याज का पाउडर, लहसुन, अदरक का पाउडर, आलू का आटा, शकरकंद का आटा, सूजी, सिंघाड़े का आटा इत्यादि की मांग बहुत है। जीवन शैली बदलने के कारण इनका सुगम प्रयोग भोजन में विविधता तथा तत्परता के लिए अनिवार्य हो गया है। अचार, पापड़, बड़ी, नमकीन, मसाले, चटनी और सूखे फलों की पैकिंग जैसे उद्योगों में महिलाएं बड़ी सफलता प्राप्त कर रही हैं। यह उद्योग कम निवेश में घर में ही शुरू किया जा सकता है। यदि कुछ नया करने एवं बाजार में पकड़ बनाने के लिए आवश्यकता हो तो विभिन्न प्रकार की दालें, चावल, गेहूं, बाजरा, मड़ुआ, सोयाबीन, जौ आदि को प्रसंस्कृत कर आटे की विभिन्न मात्रा में मिश्रित कर नए उत्पाद भी बाजार में बेचे जा रहे हैं। मिश्रित आटा, सेवई, नूडल्स, पास्ता, दाल मिक्स, इडली मिक्स, पापड़, बड़ी आदि उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फाइबर युक्त चोकर आटा, बच्चों के लिए मिश्रित अनाज आधारित रेडी मिक्स या बेबी फूड जिसे पूरक आहार भी कहते हैं, घरेलू स्तर पर बनाया जा सकता है। पालक अथवा गाजर का चूर्ण मिलाने से यही मिश्रण और अधिक पौष्टिक बन जाता है। खाद्यान्न आधारित अन्य उद्योग जैसे दलहन आधारित, फल एवं सब्जी आधारित, मसालों पर आधारित उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। आजकल नीरा प्रसंस्करण अथवा गुड़ के भी विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें ताड़ गुड़, ताल मिश्री, जैम, शरबत इत्यादि भी उपलब्ध है। अन्य उद्योग जैसे डेयरी उद्योग, ग्रामीण भारत में दुग्ध उत्पादन का बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं, अतः दुग्ध संग्रहण, पनीर उत्पादन, घी उत्पादन और दुग्ध के विपणन में भी महिलाएं सक्रिय हो रही हैं। जिन घरों में पशुपालन हो रहा है वहां दुग्ध प्रसंस्करण, छेना, पनीर, घी, खोआ और मिठाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन भी कम लागत और कम जगह में शुरू किया जा सकता है और इसमें अधिक लाभ की संभावनाएं हो सकती है। इसमें महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
इसके अलावा मधुमक्खी पालन, जो कि पर्यावरण के अनुकूल और उच्च लाभ वाला उद्योग है, इसमें राज्य सरकारें महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देती हैं। नर्सरी और फूलों की खेती, जरबेरा, गुलाब,

गेंदा आदि की नर्सरी भी महिलाओं के लिए अच्छा साधन है। जैविक खाद निर्माण, वर्मी कंपोस्ट का कार्य महिलाएं बड़े स्तर पर कर रही हैं और इसकी मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा फल एवं सब्जी अनाज के बीज उत्पादन, फल एवं सब्जी संरक्षण, सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती, फलों का व्यावसायिक उत्पादन और माली प्रशिक्षण में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। पशुपालन से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, रेशम कीट पालन, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना एवं चारा उत्पादन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। अन्य व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, ये सारे कुछ अन्य व्यवसाय हैं जो कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। नई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं में चेतना सृजन करने में मददगार साबित हो रही है, ताकि ये दुगने उत्साह एवं उद्यमिता के साथ आर्थिक स्वावलंबन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कृषक महिलाओं में नेतृत्व कौशल का विकास

की हिस्सेदारी बढ़ रही है। पशुपालन से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, रेशम कीट पालन, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना एवं चारा उत्पादन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। अन्य व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, ये सारे कुछ अन्य व्यवसाय हैं जो कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। नई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं में चेतना सृजन करने में मददगार साबित हो रही है, ताकि ये दुगने उत्साह एवं उद्यमिता के साथ आर्थिक स्वावलंबन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कृषक महिलाओं में नेतृत्व कौशल का विकास कर महिलाओं की भूमिका सिर्फ फसल उत्पादन एवं भंडारण तक सीमित न रहकर उनके विपणन में भी गिनी जा सकती है। कृषि आधारित अखाद्य पदार्थों का भी बाजार उपलब्ध है। इसमें रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ताड़ के पत्ते, छाल, जड़ का प्रयोग करके डलिया, पंखा, झाड़ू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। बांस के पत्तों से डलिया, खिलौने तथा सजावट के अन्य सामान बनाए जा सकते हैं। गेहूं के पुआल और विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करके ज्वेलरी, सजावटी सामान, सीनरी, फाइल कवर, फोटो फ्रेम इत्यादि बनाए जा रहे हैं। जूट एवं रेशे की बनी ज्वेलरी, फाइल कवर और बैग की मांग तो विदेशों में भी है। इसके अलावा सूखे फूल, डंठल और विभिन्न प्रकार के पौधों को सुखाकर ड्राई डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे हुए फूल एवं पत्तों की सजावट काफी महंगे तथा आलिशान सजावटों में गिनी जाती है, जिसका उचित मूल्य प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से हल्दी का प्रयोग पीले रंग के लिए किया जा रहा है और जैविक रंगों में इसकी विशेष मांग है। इसके अलावा चुकंदर, गाजर, जामुन, पालक, गेंदा के फूल, हरसिंगार तथा नींबू एवं संतरे का ऊपरी छिलका इत्यादि से अलग अलग रंग तथा खुशबू मिलते हैं, जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में होता है। किसी भी अवस्था में यह रासायनिक खाद्य रंगों से बहुत उत्कृष्ट हैं। इनका प्रयोग सूती हैंडलूम कपड़े के रंगों में भी किया जाता है। थोड़ी सी कौशल एवं तकनीक के साथ इन प्राकृतिक रंगों को घरेलू स्तर पर भी निकाला जा सकता है, जिससे रंग भी बनाए जा सकते हैं एवं इससे अब हर्बल गुलाल भी उपलब्ध है। इसके अलावा पेपर बैग, पेपर मशी के विभिन्न उत्पाद जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद उपयोगी साबित हो। इस प्रकार कृषि एवं कृषि आधारित अनेक उद्योग हैं जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। बैंक के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, परंतु बेहतर यह होता है कि महिलाएं भी समूह अथवा क्लब का निर्माण करके कुछ ठोस रोजगार परक कार्य करें, ताकि वे सफल उद्यमी के आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन, स्थायित्व एवं ब्रांड के रूप में विकसित हो सके। महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग में भाग लेने से अनेक लाभ हैं। इनमें आर्थिक स्वावलंबन की भावना आती है, रोजगार की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्वयं के लिए एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। उद्यमी महिलाएं एक समाज में आदर्श बनती हैं और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। वह परिवार एवं समाज में सम्मान पाती हैं। इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। महिलाओं के उद्योगों से स्थानीय बाजार विकसित होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अधिकांश उद्योग घर के पास किए जाते हैं, इससे महिलाएं घरेलू दायित्व और कार्य में संतुलन स्थापित कर पाती हैं। सरकार भी महिलाओं को कृषि आधारित उद्योग में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला किसान सशक्तिकरण योजना तथा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय सहायता। इन योजनाओं में लाखों महिलाओं को कम ब्याज पे ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनमें मुख्य है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक लोन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला किसान सशक्तिकरण योजना एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, कम ब्याज पर ऋण, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी यदि समूह एवं सामुदायिक स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें रोजगार संबंधी सभी आवश्यकताएं समय से पूरी करने में सफलता मिलती है। महिलाएं अपने हुनर के जरिए महिला ही ई हाट पर भी बिजनेस कर सकती हैं। अन्य कार्यों के लिए जिला उद्योग केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्रों से भी विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आर्थिक सुविधा के साथ यह भी आवश्यक है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास एवं बच्चों की देखभाल करने की भी व्यवस्था हो। अतः ऐसे कई केंद्रों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल तथा क्रेश की सुविधाएं भी सरकारी योजनाओं में शामिल है। हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, फिर भी कई चुनौतियां सामने हैं, जैसे पूंजी और वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुंच, उत्पादों के विपणन में कठिनाई, पुरुष प्रधान समाज में निर्णय लेने की सीमाएं और प्रशिक्षण

0: जागरूकता की कमी। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाए तो महिलाएं कृषि आधारित उद्योगों में और अधिक योगदान दे सकती हैं। महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग केवल आर्थिक साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। ये उद्योग न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः आवश्यकता है कि महिलाओं को समय पर आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाए। यदि सरकार, समाज और परिवार मिलकर सहयोग करें तो महिलाएं भारतीय कृषि प्रणाली और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। अतः यह कहना उचित है कि कृषि आधारित उद्योग महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव है और भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: अभी हमने कही वार्ता सुनने जा डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी से, महिलाओं के लिए कृषि आधारित उद्योग। और देखिए कि कितना हमने के निमन जानकारी भेटल, कितना फरिया फरिया के बतौली। अब महिला लोग खातिर कृषि आधारित उद्योग अगर करे के चाहतरी, अपना समय के उपयोग करके कुछ आमदनी करे के चाहतरी, तो कई उपाय बा। पापड़, बड़ी, चिप्स, अचार, कई तरह के काम करके वो अपन आमदनी बढ़ा सकत रही। तो ई वार्ता खातिर डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रवा सभी से कह ले रहनी कि सरोज कुमारी से और ही गीत सुनब जा, तो चलिए सुनी जाइए गीत।

वाह, देखिए हमने कई झूमर सुनत रहने जा सरोज कुमारी जी से, और अब समय रही तिनका से, और ये गीत जरूर सुनो जा तनिसा, कुछ घर घर वार के बात हो जाए। हमने का तो देखिए भंसा भात के में बहुत समय देवे पड़ेला, और हमेशा ध्यान रहेला कि का बनाई का खियाई। तो एक घड़ी तो गर्मी के दिन में लागेला कि कुछ हल्का खाई, लेकिन तनी खाई में भी निमन लागे। तो आज रउआ सभी के कुछ रंग रंग के सलाद बता रहल बानी बनावे के। अंकुरित मूंग के सलाद, ई बनावे खातिर 2 कप अंकुरल मूंग और महीन कतरल खीरा, टमाटर, हरियर मरचा, नींबू के रस, काला आ सादा नमक, धनिया के पतई सजावे खातिर। अंकुरल मूंग के कुकर में 2 सीटी लगा के उसीन लीही, पानी ओकर छान लीही। अब बढ़हन कटोरा में मूंग, टमाटर, खीरा, नींबू के रस, मरचा, नमक डाल के निमन से मिला दीही, और धनिया पत्ते से सजा करके खाई या खियाई। देखी पौष्टिक भी बा और खाए में भी निमन लगे। वही तरह पनीर के सलाद बनावे खातिर 200 ग्राम पनीर, खीरा एगो, प्याज आधा, पाकल आम के टुकड़ी आधा कप, महीन कतरल धनिया के पतई, भूंजल काजू 1/4 कप, तेल 2 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से, नींबू के रस 1/4, तेल, मरचा के बुकनी, ऑलिव ऑयल 2 चम्मच और 1 चम्मच मध आदि के रस 1 चम्मच। पनीर के कढ़ाई में तेल डाल के छान ली और ठंडा भैला भर पनीर और खीरा के छिलके छोट छोट टुकड़ी में काट ली। सब सामान के एगो कटोरा में मिला ली, धनिया के पत्ते से सजा के खाई खियाई, और देखी कि ई खाए में कितना निमन लागेला। और सबसे बड़ा

बात ई बा कि ई स्वाद से भरपूर तो बढ़ले बा, स्वास्थ्य खातिर भी उतने पौष्टिक बा। तो अब रवा सभे से विदा लेवे से पहले एक और गीत सुन लेती जा सरोज कुमारी जी से।

0: बा देखी झूमर सुने में निमन लागल नू। हमरा तो एकदम मन झूमत रहे आ हमरा लागत था कि रोवा सभे के भी बहुत निमन लागल होखी ये झूमर। और अब घड़ी इशारा कर रहल बा कि चले के बेरा हो गई बा, तो अपन ये गर्मी में ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अर्चना के प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था के स्तंभ। वार्ताकार हैं रामजी प्रसाद सिन्हा।
1: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ से और प्राचीन काल से आधार रहा है। इस उद्यम के आधार पर ही भारत की प्रगति सुनिश्चित होती रही है। प्राचीन काल में भारत की अर्थव्यवस्था में इनका महत्व कितना था, इस बात से हम समझा जा सकता है कि सब प्रकार के जो उत्पादन थे कृषि के अतिरिक्त, वो कुशल कारीगरों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता था और उनका व्यापार भी होता था। 3000 ईसा पूर्व से और लघु और सूक्ष्म उद्योग का एक इतिहास मिलता है कि उसकी क्वालिटी कैसी थी। 3000 ईसा पूर्व में भी भारत से यूरोप तक व्यापार होते थे। भारत का वस्त्र, स्टील की वस्तुएं, रत्न आभूषण, पन्ना मूंगा हीरा मोती आदि, इसके साथ मसालों का यूरोप में बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। इसके अतिरिक्त विलासिता संबंधी वस्तुएं, हाथी के दांत से बनी वस्तुएं, सुगंधित तेल, इत्र, रेशमी कपड़े और नील का भी निर्यात होता था। यानी भारत का हर गांव उस समय कुछ न कुछ उत्पादन करता था, कुछ न कुछ विशेष उत्पादन के लिए जाना जाता था। प्रत्येक गांव उत्पादन का केंद्र था। कृषि उत्पादों के साथ साथ गाँव में ही पीतल के उद्योग थे, कांसे और तांबे के बर्तन बनाए जाते थे। गाँव में ही खांडसारी उद्योग था, गाँव में ही कपड़ों का भी उत्पादन होता था और इस प्रकार सभी गाँव जो है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। एक प्रकार से अगर एक गाँव छोटा है, एक गाँव से नहीं हुआ तो कोई एक दो गाँव को मिला करके आवश्यकता की सभी वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन उसी गाँव में हो जाया करता था। इस प्रकार अधिकांश हाथों को काम मिला हुआ था और यही समृद्धि का आधार था। यह वह कालखंड था जहां दुनिया ने भारत को सोने के चिड़िया के रूप में संबोधित किया। इसलिए एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, इसका इम्पोर्टेंस हमेशा से रहा है और आज भी है। आज जहां बड़े उद्योगों के माध्यम से दुनिया में विकास की एक अवधारणा और कल्पना चल रही है, बड़े उद्योगों के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें जिसमें अधिक पूंजी लगता है उनका उत्पादन तो होता ही है, लेकिन छोटी वस्तु जिसका कि सरलता से छोटे उद्योगों में उत्पादन हो सकता है, उसका उत्पादन भी बड़े पूंजी वाले व्यवसाय के रूप में उत्पादन किया जा रहा है। परिणामतः रोजगार के अवसर घटे हैं और रोजगार के अवसर घटने के कारण से बेरोजगारी आई है, गरीबी आई है और इसलिए यह प्रयास हर एक प्रकार से उसको पुनर्संरक्षित करने का चल रहा है। सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। आज़ादी के बाद सरकारों ने इस उद्योग को एक बार पुनः बहाल करने की कोशिश की। अंग्रेजों के ज़माने में इस उद्योग को पूरी तरह से नष्ट करने का एक प्रयास किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में सरकारों ने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन इसके साथ ही सरकार का विश्वास कहीं ना कहीं बड़े उद्योगों के उत्पादन से ही विकसित भारत का निर्माण होगा, ऐसी मान्यता रही, जिसके कारण से पर्याप्त ध्यान शायद नहीं दिया गया। सरकार ने वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में बड़े बड़े मिलों को प्रवेश दिया, जिसके कारण से उत्पादन में घरेलू उद्योग आज भी मिलों की बने हुए कपड़े के सामने प्रतियोगिता नहीं कर पा रही है। यहाँ यही हाल है अन्य उद्योगों का भी। पहले गाँव में ही खाद्य तेल यानी फूड प्रोसेसिंग का जो काम है, चावल बनाना, उसका छोटा छोटा एक उद्योग, कुछ लोग चावल का भूजा बनाने का काम करते थे, कुछ लोग गुड़ बनाने का काम करते थे, यानी कृषि आधारित कच्चे माल से भी प्रोसेस्ड फूड का उत्पादन गांव में हो जाता था। आज तेल के बड़े बड़े मिल लगे हुए हैं, पाउच में बंद हुआ तेल बिक रहा है बाजारों में, परिणामतः उसके प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ा है और विज्ञापन का जो इतना व्यापक तंत्र है, जिसके कारण से गांव का वो जो छोटा उद्योग था जिसमें गांव में ही तेल की

होती थी, चावल की कुटाई होती थी, आटा की पिसाई होती थी, वो सब काम धीरे धीरे बड़े बड़े उद्योगों ने लेना शुरू किया है। परिणामतः ये उद्योग पिछड़ते गए, इसलिए इस इन उद्योगों को और संरक्षित करने के लिए भी सरकार को आगे आने की जरूरत थी। अभी सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान देना शुरू किया है। आज़ादी के बाद सबसे पहले 50 के दशक में इन उद्योगों के संरक्षण के लिए और विकास के लिए कुछ नीति बनी। 1954 में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसका काम था कि चल रहे उद्योगों के लिए कच्चे माल, उसका वित्तीय पोषण, साथ ही उनके कारीगरों का कौशल विकास आदि का काम करके उनका संरक्षण करना था। नए उद्योगों की स्थापना के लिए भी युवाओं को प्रेरित करना था। 60 से 80 के का जो दशक था उसमें लघु उद्योग में संरक्षण बाग का काल कहा जाता है, जिसमें सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कर में व्यापक छूट एवं किफायती दर पर सरलतापूर्वक वित्त पोषण का प्रावधान किया। 1991 में जब नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, सरकार ने लिबरलाइजेशन विमुक्तीकरण नीति के तहत अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार को कठोर लाइसेंसिंग एवं कर प्रणाली के बंधनों से मुक्त कर दिया। 1999 में केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बना दिया। 2001 में अर्बन स्मॉल बिजनेस और रूरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बांटकर इसके लक्षित विकास का प्रयत्न किया। 2006 में सरकार ने इसका एक नए तरीके से परिभाषित किया, MSMED एक्ट 2006 के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्थान पर इनका नामकरण MSME किया गया और इसकी परिभाषा इसके मशीन एवं टूल्स यानी प्लांट और मशीनरी में किए जाने वाले कुल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसको परिभाषित किया गया। लेकिन वास्तव में अभी जो MSME का जो नामकरण हुआ है, ये सरकार ने इसको नए सिरे से 2020 में परिभाषित किया और उसमें सिर्फ प्लांट और मशीनरी में होने वाले इन्वेस्टमेंट को ही आधार न बनाकर सरकार ने टर्नओवर को भी इसमें शामिल किया। इनके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रावधान किए हैं ताकि ये जो नॉन फॉर्मल जो उद्योग चलते हैं उसको भी सरकार का बेनिफिट मिल सके, सरकार के स्कीम का लाभ मिले। और इसके लिए सरकार ने बहुत ही सरलतापूर्वक पंजीयन करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी सरकार के इस पोर्टल पर आप जाकर अपने इकाई का, अपने उद्यम का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सरलता से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके साथ ही इस रजिस्ट्रेशन का लाभ क्या है कि जो इकाइयां इसमें रजिस्टर्ड हो जाती हैं उन इकाइयों का कई प्रकार की सरकार की के स्कीम का लाभ मिलता है। जैसे लोन लेने, पूंजी जुटाने की एक चुनौती होती है तो इसके लिए बिना कोई गारंटी के, बिना कोई कोलेटरल के सरकार ने एक व्यवस्था की है कि ऐसे पंजीकृत इकाइयों को बैंक से लोन मिल सके। साथ ही सरकार का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम है उस स्कीम का भी लाभ मिलेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये तीसरा स्कीम है सरकार का, उसका भी बेनिफिट इन इकाइयों को प्राप्त होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, पेमेंट डिलेड होने के कारण से कई कठिनाइयां होती थी और काफ़ी उसको में फाइन और इन इकाइयों पर लगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन कैसे हो इसके लिए व्यवस्था की है। तो इस प्रकार के ये लाभ सरकार पंजीकृत इकाइयों को प्रदान करती है और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में, जिसको हम लोग न महत्वहीन मानते थे, ऐसे छोटे छोटे उपक्रम भी आज पंजीकृत हुए हैं और एक बड़ी संख्या में इससे युवाओं को प्रोत्साहन भी मिला है, उसको एक पहचान भी मिली है। इन एक्टिविटीज में 2020 की परिभाषा में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, जो जुड़ा है किसी न किसी इंडस्ट्रियल वर्क से, उद्यम से जुड़ा हुआ कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी इसमें सम्मिलित कर दिया। परिणामतः कुछ सर्विस सेक्टर को भी सम्मिलित कर दिया। परिणामतः जितने प्रकार के भी काम हैं एग्रीकल्चर के अतिरिक्त
और शासकीय कार्य के अतिरिक्त, वो सब इसकी परिभाषा में परिभाषित हो जाते हैं।

0: और इसलिए सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इनका जो कैचमेंट एरिया है बहुत बड़ा है, इसलिए सरकार ने इनको व्यापक तरीके से भी इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। सरकार ने इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे लिक्विडिटी एंड क्रेडिट इन्हांसमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब है कि सरकार विभिन्न इकाइयों के पास पूंजी की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार ने इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम की घोषणा की, यानी जिसमें बड़ी इकाइयों के ऊपर कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE जैसे इकाइयों के ऊपर ऐसे ये दायित्व दिया गया कि इन इकाइयों के पोषण की व्यवस्था की जाए, इन इकाइयों को किस तरह डिस्काउंटिंग का एक पोर्टल तैयार कर दिया गया, और इन ऐसे इकाई जिनको पूंजी की ज़रूरत है, पूंजी के अभाव में ये दम नहीं तोड़ने, तो इसके लिए सरकार उनके संरक्षण के लिए ये व्यवस्था बनाई। इसके अतिरिक्त सरकार ने कॉरपोरेट मित्र करके एक स्कीम चलाया हुआ है, जिसका काम है कि सरकार कंप्लायंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इन इकाइयों का कैसे कम हो, कुछ लीगल कॉस्ट भी होते थे उसका बर्डन इन कंपनियों पर, इन इकाइयों पर पड़ता था, उन इकाइयों पर इन बर्डन का कम से कम दबाव हो, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। और इसके लिए ICAI, ICS और ICMI जैसी इकाइयाँ सरकार की इसमें सतत कार्यरत है, प्रयास कर रही है कि यह काम इनका संरक्षण हो, पोषण हो। साथ ही सरकार ने स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से एक नई आयाम, नए प्रकार का प्रोत्साहन युवाओं को दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी पैमाने पर बड़ी तेजी से MSME सेक्टर का विकास हो रहा है। सरकार ने इसके लिए तीन और स्कीम जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक सेटलमेंट फॉर्म दिया, दूसरा था क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म, वो सरकार ने क्रेडिट की एक गारंटी एक प्रकार से दी है, इसके लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके तहत माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को समय आवश्यकता के अनुसार उनको लोन मिलता रहेगा। गवर्नमेंट का ई मार्केटिंग सिस्टम भी काम कर रहा, ताकि इनके प्रोडक्ट बिके कहाँ, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी सरकार ने उनको मदद करना शुरू किया है इसके माध्यम से, ई मार्केटिंग प्लेस, आप अपने प्रोडक्ट का उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है कि हम इसके लिए मार्केट खोजें जहाँ सबको काम मिल सकता है, उसके लिए यही सेक्टर है, हम इस सेक्टर को जितना मजबूत करेंगे भारत उतना मजबूत होगा, उतना खुशहाल होगा, यह इतिहास भी बताता है और वर्तमान भी यह हमको समझा रहा है, इसलिए हमें इस दिशा में और तेजी से प्रयास करना चाहिए, और जो जिस क्षेत्र में हमारी संभावना है उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इस उद्योग में IT सेक्टर वगैरह के जुड़ने से इसका यह केवल अब ग्राम आधारित नहीं है, स्किल्ड बेस्ड ही नहीं है, नॉलेज बेस्ड भी है, जिसमें नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, इसके आधार पर इसका हम विकास कर सकते हैं, और इस दिशा में इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। बिहार में भी अपने बिहटा में एक प्रशिक्षण केंद्र है, इसका व्यापक प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है उद्यमियों का, और इसके माध्यम से ट्रेंड लोग, नॉलेज वाले लोग जब इस काम में आ रहे हैं तो इस काम का भी विकास हो रहा है। आज सब प्रकार के लिए आज टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, उस दिशा में भी सरकार सहयोग कर रही है, तो इसके माध्यम से सरकार एक प्रयास कर रही है, हम सब लोग सरकार के इस प्रयास के साथ जुड़े और हम भारत को एक विकसित भारत बनाने के अपना सहयोग दें। धन्यवाद।
1: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था के स्तंभ। वार्ताकार थे रामजी प्रसाद सिन्हा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है देशगान।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर को फिल्म दिल में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

ये सुनिए, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है अजूबा। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

उसके साथ कंपेयर करते हैं, दोस्त

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय चयन परिषद आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है। इसे लेकर

0: सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज भी 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद किया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू कर दी गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। लाउंज में शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। पटना देश का 3रा शहर है जहाँ गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने इन स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नई जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसैप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉड की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल अंतर्गत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशन के बीच राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल अधिकारियों के अनुसार इसे ठीक कर लिया गया है और रेलखंड पर परिचालन बहाल हो गया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आज रियासत में मुख्तलिफ

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम डेट 3 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bsnl.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश

0: रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में

0: अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन
1: है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी

0: किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मुकेश को, फिल्म का नाम है दो रास्ते। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर 20 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने। बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी,
1: हाँ?
2: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे होंगे,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होते।
1: तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे

0: मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। हाँ, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
1: दोनों भी है ना। हाँ। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
1: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली, इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उसपे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही,
0: बिल्कुल मिलता कुछ नहीं है, है ना। लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं और अनावश्यक, कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए,
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया,
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी,
1: हाँ
0: पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो
0: है।
1: हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे
0: भाई
1: भाई।
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियाँ विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: मांग
0: है।
1: हो गई है, बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग
0: अलग
1: बनाती
0: बनाती
1: है।
0: है। और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का

0: परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके।
1: घर चल सके, उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और से और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है, तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही
1: जरूरी
0: है कि
1: बिल्कुल।
0: कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि वक्त बहुत ज्यादा है
1: ज्यादा
0: सर,
1: लगता है।
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन
1: तैयार।
0: के जा
1: और
0: सकते।
1: जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ,
1: हाँ
0: यानी आप उसमें बिल्कुल सिर्फ
1: प्लीट्स जो है,
0: एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतने
1: उतना ही
0: ही समय
1: समय
0: में
1: लगता
0: साड़ियां
1: है,
0: भी
1: वो
0: पहन
1: उसी
0: सकते
1: तरह से
0: हैं।
1: पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती हैं और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसकी
1: और होता
0: बात कुछ और
1: है
0: होती है ना।
1: ना। चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, एक पन दो कार है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है, वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती
0: है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक

0: चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं,
1: हाँ,
0: इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत इस्तेमाल होने लगता है। तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह की
0: जी
1: भाषा
0: उसे
1: का।
0: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने। और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग। और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें। तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली, कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा, यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके
1: बिल्कुल
0: बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव,

0: क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है,
1: हाँ
0: और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा, और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे, जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं, और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है, जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है।

0: उसने संयम साध लिया, मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस
0: क्या
1: होती।
0: बात है, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: सुंदर
0: लिखा है,
1: विचार
0: बहुत
1: जी।
0: सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करे, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए या एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा
1: जी।
0: रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए,
1: कि
0: आज
1: इस
0: नहीं तो
1: साल नहीं
0: कल।
1: तो अगले साल आपको परीक्षा
0: हाँ,
1: में सफलता मिल ही जाएगी
0: जिंदगी
1: और इतना
0: खाली,
1: सुंदर जीवन है
0: हाँ,
1: मिला
0: उसको हम
1: है
0: खत्म कर देते
1: जी।
0: हैं।
1: तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर ला के देंगे या
0: हाँ,
1: 2-4 दिन बाद ला कर देंगे। तो
0: बिल्कुल,
1: बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह से
0: संयम सिखाया जाए। और
1: जी।
0: दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही
1: समाप्त कर दें
0: समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए, बोलने का
1: कि
0: एक गाना
1: गाना सुना
0: सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक छोटा, एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकते हैं। इसका मतलब
0: है।
1: हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना।
0: कुछ मुरब्बे और
1: हाँ, ये
0: अचार
1: भी बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर
0: रही
1: रही
0: है
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे
1: सुन रहे हैं, तो फिर
0: हैं।
1: हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही
0: जी।
1: और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को

0: छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना ये
0: अचार। क्या
1: अच्छा।
0: बात है, तुम्हें
1: और
0: तो थेपले की भी याद दिला दी है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं। तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी ना जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं।
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को, सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन

0: धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती है। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था,
0: संगीत
1: वो
0: सरिता,
1: संगीत सरिता
0: अभी भी आता है।
1: उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक जॉइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई।
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
1: जी हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
1: जी
0: बताइए।
1: जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में यही करना है या यहीं रहना है तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
0: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
1: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूँगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
0: जी,
1: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस

0: थी, आकृतियाँ थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
1: वाह
0: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे
1: गजब।
0: सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने वाला
0: हिला
1: है
0: देने
1: तो।
0: वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जो फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीज़न में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी जी
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती
0: मैं
1: है?
0: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूँ उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियाँ होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
1: जी
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
1: जी
0: उसको। मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं।
1: जी
0: तो ये जो उनका एक समर्पण भाव

0: हैं जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज़ है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को ख़ास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे
0: किशोर कुमार
1: पिताजी।
0: मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं।
0: जी
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ

0: काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है, और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक सब बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी
1: पिघला
0: सीधी
1: दे
0: साधी अप्रोच की तरफ।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें, तो वो लोग भी इसी सिंपलिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है, तो वो उसी ही सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है।
1: मिलता है कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र
1: नहीं।
0: नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं और बदलते रहे हैं।
1: जी
0: और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था।
1: जी
0: अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं, तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पे कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
1: क्या
0: वो एक
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है।
1: ओ
0: पीला रंग लगाना
1: हम
0: सबसे मुश्किल काम है।
1: अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे
0: हाँ, तो
1: बताएं।
0: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए। तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें, तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं, किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह

0: करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
1: जी
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में ला के उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज़ अगर देखते हैं तो रोज़ आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
1: जी
0: लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूँगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
1: फुर्सत
0: फुर्सत
1: की
0: के रात
1: रातें,
0: दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की। रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और

0: वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह कर के भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
1: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है ज़रा बताइए।
0: वो मेरा पहला वनमैन शो था बम्बई में और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: नमस्कार, युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को उनकी रेडियो दोस्त अंकिता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंबिका।
1: तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप भी हमारी तरह एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे।
0: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी और समृद्ध किसान उत्सव।
1: और आज तो घूमता माइक्रोफोन भी है अंकिता, और बीच में गीत संगीत का दौर तो चलता ही रहेगा।
0: और अंत में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट और रोचक तथ्य।
1: बिल्कुल, तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनाते अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दंगल से दिलेर मेहंदी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: प्रेरक पंक्ति के साथ। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, उससे बढ़ता है देश का मान। बुद्धि, साहस और सम्मान से रचती है वह नया विधान।
1: नारी जब कूटनीति में आती है, शांति और प्रगति की ज्योति जगाती है। उसके नेतृत्व और दूरदृष्टि से दुनिया नई उम्मीदें पाती है।
0: शांति का संदेश सुनाती, सहयोग का दीप जलाती, अपने विवेक और धैर्य से नई सफलताएं अपनाती।
1: बिल्कुल, और कूटनीति के पथ पर चलकर विश्व को देती नई दिशा, संवादों से सेतु बनाती मिटती हर मान की निराशा।
0: हर चुनौती का सम्मान करके आत्मविश्वास से आगे बढ़ती, समानता और न्याय की राह पर नई पीढ़ी को प्रेरणा देती।
1: बिल्कुल, आओ मिलकर मान बढ़ाएं, महिलाओं का सम्मान करें, कूटनीति के हर क्षेत्र में उनके योगदान का गुणगान करें।
0: यह पंक्तियां हमें बताती हैं कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं,
1: और कूटनीति के क्षेत्र में भी उससे अछूता नहीं है।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं अगला ट्रैक।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिया वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला को बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंतराल से पहले फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन की आवाज में ये प्यारा सा गाना।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
5: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस की। आज का विषय है अंतरराष्ट्रीय

0: महिला कूटनीति दिवस।
1: आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, नेतृत्व और समझदारी से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल अंबिका, कूटनीति का मतलब सिर्फ देश के बीच बातचीत कराना नहीं है, बल्कि शांति स्थापित करना, आपसी सहयोग बढ़ाना और समस्याओं का समाधान करना भी है। लंबे समय तक इस क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी अधिक रही है, लेकिन आज महिलाएं भी राजदूत, राजनायक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: सही कहा अंकिता, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की आवाज और उनकी भागीदारी वैश्विक निर्णयों के लिए कितनी आवश्यक है। जब भागीदारी में महिलाएं मीन्स निर्णयों के लिए कितनी वो जरूरी होती है, महिलाएं बातचीत और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती है और समाज और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान और

0: जब भागीदारी में महिलाएं मींस निर्णयों के लिए कितनी वो जरूरी होती है, महिलाएं बातचीत और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती है और समाज और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान और प्रभाव भी मींस में भी अपना महत्वपूर्ण हिस्सा वो निभाती हैं।
1: अंबिका, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि कूटनीति में महिलाओं का योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
0: जरूर, महिलाएं कूटनीति में संवेदनशीलता, संवाद क्षमता और नए दृष्टिकोण लेकर आती हैं, चाहे वह शांति वार्ता हो या फिर से मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो या फिर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। कई महिला राजदूतों और नेताओं ने कठिन परिस्थितियों में भी देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने का कार्य किया है।
1: और ये जानना भी रोचक है कि आज दुनिया के कई देशों में महिलाएं विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व कर रही हैं। यह बदलाव समाज में समान अवसरों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुंकी वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: अंकिता, लेकिन अभी भी हमें लंबा सफर तय करना है। कई जगहों पर महिलाओं को नेतृत्व के अवसर कम मिलते हैं, इसलिए जरूरी है कि लड़कियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं, ताकि वे भविष्य में कूटनीति सहित हर क्षेत्र में, चाहे जो भी हो, वो अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल अंबिका, एक मजबूत और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाली जगहों पर होंगी तो समाज में सकारात्मक बदलाव और तेजी से आएगा।
0: इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं की क्षमता और योगदान को सम्मान देंगे। हर लड़की के सपने को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। और अंकिता, आपको पता है इस वर्ष की तो थीम भी है कि वैश्विक मामलों में समान नेतृत्व को आगे बढ़ाना, मीन्स एडवांसिंग इक्वल लीडरशिप इन ग्लोबल अफेयर्स।
1: तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस हमें यही संदेश देता है कि महिलाएं केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य को दिशा देने वाली शक्ति हैं।
0: तो आइए हम सभी मिलकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें और एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दें जहां हर महिला अपनी योग्यता और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ सके। तो काफी बातें कर ली हमने, अब अपने श्रोताओं को सुनाते एक प्यारा सा गीत।

अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश, कौन द्वार हम खटकाए, कौन से वादे दोहराए, आम आदमी कितना कितना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्याग्रह से राजीव सुंदरसन की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे समृद्ध किसान उत्सव की, जो किसानों के सम्मान और कृषि विकास को समर्पित है।
0: समृद्ध किसान उत्सव वास्तव में किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने का एक शानदार अवसर है।
1: बिल्कुल अंबिका, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वे दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न, फल, सब्जियां उगाते हैं। ऐसे में यह उत्सव उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का सिर्फ एक छोटा सा माध्यम बनता है।
0: सही कहा आपने। इस उत्सव के दौरान किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक उपकरणों और बहुत सारे मीन्स योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होती है ना?
1: जी अंबिका, आज कृषि क्षेत्र में तकनीक का महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है। ड्रोन, सेंसर, मोबाइल ऐप और मौसम पूर्वानुमान ने जैसे सुविधाएं किसानों को काफी मदद दे रही है।
0: बिल्कुल, अब किसान मौसम की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं और तो और उसी के अनुसार खेती की योजना भी बना सकते हैं। इससे फसल को नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है।
1: समृद्ध किसान उत्सव में जैविक खेती पर भी विशेष जोर दिया जाता है। जैविक खेती न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है।
0: हाँ, और जैविक उत्पादों की बाजार में मांग भी बढ़ रही है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और उनकी

0: आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
1: किसानों की समृद्धि के लिए जल संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सबको ही जानते हैं कि वाटर कंजर्वेशन सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, हर एक इंसान के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: वर्षा जल संचय और सूक्ष्म सिंचाई जैसी तकनीकें खेती को अधिक लाभदायक बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। जल एक अमूल्य संसाधन है। यदि इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो मीन्स कम पानी में भी अच्छी खेती करना संभव नहीं होगा। इसलिए यह संदेश इस उत्सव के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है।
1: सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और कृषि ऋण सुविधाएं। इन योजनाओं की जानकारी भी उत्सव के दौरान दी जाती है।
0: सही कहा अंकिता आपने। कई बार जानकारी के अभाव में किसान योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और ऐसे आयोजनों से उन्हें सही जानकारी मिलती है और वे अपने अधिकारों तथा अवसरों के बारे में भी जागरूक होते हैं।
1: अंबिका जी, युवाओं की भूमिका भी कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है।
0: बिल्कुल
1: कोई युवा आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खेती को एक सफल उद्यम के रूप में अपना रहा है।
0: हाँ, और यह बहुत सकारात्मक बदलाव है। आज के युवा नवाचार, तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र और अधिक सशक्त हो रहा है।
1: समृद्ध किसान उत्सव, ऋषि कृषि जागरण और विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा देश भर के जिलों में आयोजित किया जाने वाला एक दिवसीय किसान मेला और संगोष्ठी कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल, इन उत्सवों का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों और कृषि व्यवसाय के अवसरों से जोड़ता है।
1: बिहार में समृद्ध किसान उत्सव यात्रा के तहत 24 जून को समस्तीपुर में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
0: जिसमें किसानों को विशेषज्ञों से सीधा मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है।
1: तो आप जरूर जाएं और देखें कि समस्तीपुर में जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से किसानों को अवेयरनेस फैला रहा है कि हम अपने नए तकनीकों के थ्रू कैसे कैसे खेती कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए सुनते हैं आपका अगला गाना।
2: नमस्कार।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोअर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युव वाणी में। अभी आप अंतराल से पहले सुन रहे थे फिल्म मेरे यार की शादी है से गाना आशा भोसले की आवाज में। तो चलिए चलते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर जो कि है घूमता माइक्रोफोन।
4: आपका शुभ नाम क्या हुआ?
5: मेरा नाम शहरयार खान है।
4: अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ योग से रिलेटेड। 21 तारीख को योगा दिवस आने वाला है, तो आप मेरे सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे?
5: जी जरूर।
4: अच्छा, तो आप बता सकते हैं मुझे कि योग के क्या फायदे हैं? नहीं करते हैं और इसका थोड़ा फायदा भी बताएं।
5: जी मैं जरूर बताता हूँ। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके कुछ फायदे हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। योग शारीरिक लचीलापन, ताकत और संतुलन में सुधार करता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों को लचीला बनाता है।

0: मानसिक शांति भी बनाए रखता है। योग मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है या मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तीसरा, तनाव मुक्ति होती है। योग तनाव को कम करने में मदद करता है और शरीर को आराम देता है। यह तनावपूर्ण जीवन में शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। चौथा, नींद की गुणवत्ता में सुधार होती है। योग नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह शरीर और मन को आराम देता है, जिससे अच्छी नींद आती है।
1: अच्छा, आप योग करते हैं क्या डेली?
0: जी, मैं रोज करता हूँ।
1: अच्छा, तो योग का मतलब कि कौन सा समय आपने फिक्स किया है, या आपके आपकी नजर में कौन सा योग का समय अच्छा है?
0: मेरे नजर में योग का समय सबसे अच्छा सुबह का समय है, जब हम सो के उठते हैं उस वक्त का।
1: जी, शाम में भी तो लोग करते हैं ना, शाम में भी किया जा सकता है।
0: जी, शाम में भी किया जा सकता है, मगर सुबह का जो ताजी हवा होती है उसकी भी हमें मजा मिल जाता है।
1: जी, ये तो बात आपने सही कहा, सुबह का मजा ही अलग होता है। सुबह की सुबह की चहचहाहट और सूरज की लालिमा अपनी ही अद्भुत होती है। जी, आप क्या संकल्प लेंगे योग के लिए? अभी जो 21 तारीख को आने वाला है योग दिवस, तो उसके उसके लिए आपका कोई संकल्प है, या आप कोई मोटिवेट करेंगे अपने दोस्तों को इसके लिए कि योग
0: हाँ, मैं अपने दोस्तों को इसके लिए प्रेरित करूंगा कि वो लोग भी रोज योगा करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप शुभ नाम क्या हुआ?
3: रमेश कुमार मिश्र।
2: आप थोड़ा सा समय देंगे मुझे?
3: जरूर जरूर।
2: जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं?
3: योग हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और इसे चार भाग में विभाजित किया गया है, जिसका पहला है वैदिक युग, फिर है दूसरा है क्लासिकल युग, और तीसरा है मध्य युग, और चौथा है वर्तमान युग। तो ये योग हमारे यहाँ शुरू से ही लोग करते आ रहे हैं, और पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, और आधुनिक काल में तो इसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि लोग तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, तो तनाव मुक्त होने के लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है, और इसे आदमी को बहुत समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।
2: जी, आप एक और छोटा सा सवाल है सर। सर, क्या आप डेली योग करते हैं?
3: हाँ, कुछ तो योग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, या श्वास लेना छोड़ना, ये सब हम प्रतिदिन करते हैं, और उसका लाभ हमें मिल रहा है।
2: आप अपने जीवन में भी इसका लाभ देख रहे हैं?
3: यस यस, जरूर जरूर।
2: आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे
3: हाँ,
2: इसके
3: कि
2: लिए?
3: अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग करें, क्योंकि कहा गया है कि प्रथम सुख हो स्वस्थ काया। तो स्वस्थ काया के लिए जरूरी है कि हम योग को अपनाएं, और अपने ये बहुमूल्य जीवन को बहुमूल्य बनाएं, इसका महत्व समझें। धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए हमें। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ?
4: नमस्ते, मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं 21 वर्ष का हूँ।
2: जी, नमस्कार। आप योग के बारे में कुछ जानते हैं? जी,
4: जी, मैं योग के बारे में जानता भी हूँ और करता भी हूँ।
2: तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा हमें भी बताइए योग के बारे में आप।
4: योग से मेरा जो जुड़ाव है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सभी सभी लोगों से। मैं एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे जो योग की शिक्षा और योग को जानने का जो अवसर प्राप्त हुआ वो संगीत के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो प्रायः जब मैं संगीत का अभ्यास करता हूँ तो योग योग से ही शुरू होता है, क्योंकि संगीत साधना है और साधना का शुरुआत योग से, और योग भी एक साधना है, तो ये दोनों बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण योग बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है मेरे से, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
2: अच्छा, दैनिक जीवन में आप कितना समय देते हैं योग को?
4: ऐसे योग बहुत ज्यादा दैनिक जीवन में मैं प्रायः जब मेरी जो सुबह की दिनचर्या की शुरुआत होती है वो योग से ही होती है, और जो दिन का सायं काल होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, तो मैं संगीत का विद्यार्थी होने के कारण ज्यादा खेल कूद शारीरिक ज्यादा व्यायाम नहीं कर सकता, तो उस समय जो योग के आसन हो गए, जैसे चंद्रासन हो गया, सिरासन हो गया, और ये सारी चीजें

0: उस समय करने का मुझे वक्त मिल पाता है, तो इसलिए मैं मतलब दिन भर योग तो लगभग जुड़ा ही रहता है, सुबह शाम तो ऐसा रहता है।
1: अच्छा, योग के लिए आप युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे? आपका क्या मैसेज होगा आज के युवाओं के लिए?
0: मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आजकल के जो युवा हैं उन्हें तो बिल्कुल ऐसा योग तो करना ही चाहिए, क्योंकि योग अब अभी के जो युवा हैं वो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो मेरे अनुसार जैसे वो हर चीज को एक बार ही ट्राई करके देखना चाहते हैं, वैसे योग को एक बार ही जरूर उन्हें ट्राई करके देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि योग
1: लग जाएगी, क्योंकि उनको भी अपने दैनिक जीवन में इसका फायदा दिखने लगेगा, तो वो खुद ही करने लग जाएंगे। जी जी बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा मोटिवेशनल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ?
2: मेरा नाम अंकिता शर्मा हुआ।
1: अच्छा, आप बता सकती हैं हमको योग क्या है, या आप योग के बारे में क्या क्या जानती हैं? थोड़ा ब्रीफली, मतलब ये शॉर्ट में बता दीजिए।
2: वैसे योग के बारे में कहें तो ये तो एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो कि शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये व्यापक प्रणाली है। और इसमें मतलब कि आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, मतलब यही सब अभ्यास इसमें शामिल होता है। वैसे योग का मतलब जुड़ना होता है।
1: जी, बहुत बहुत कुछ आप तो जानती है योग के बारे में।
2: एक्चुअली मैं ऑलरेडी योग करती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो हमारे कॉलेज में योगा डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे कॉलेज में करवाया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा बेनिफिट है। इससे तनाव में कमी होता है, बहुत अच्छी नींद आती है हमें, वजन प्रबंधन होता है इसमें, और बेहतर श्वास नियंत्रण भी इसमें होता है, और शारीरिक फिटनेस और लचीलापन तो होता ही है।
1: हाँ अंकिता जी, आपने जब से योग शुरू किया है तो आपको कुछ लाभकारी आपके लिए साबित हुआ है ये? क्या
2: बिल्कुल,
1: आपने इसके बारे में?
2: सबसे पहले तो आजकल के जो युवा है वो ऑब्वियसली बात है, हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो है फिटनेस, मतलब थोड़ा लुकिंग में थोड़ा अच्छे लुक्स आए।
1: सारे लोग जिम का चक्कर काटने लग गए हैं, जबकि
2: हाँ
1: युवा अपने आप
2: वही
1: कहते हैं लोग।
2: वही चीज है। तो मीन्स इससे और बहुत सारा, जैसे कि मुझे ना पहले थोड़ा पाचन का, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था, तो उसमें बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि ये योग जो होता है ना, ये कब्ज वगैरह जैसे समस्या से राहत दिलाने में ये सब हेल्प करता है, और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मीन्स नींद रात को बहुत अच्छी आती है। और जैसे भी जोड़ों का दर्द या पीठ का दर्द, पहले मतलब बहुत पेन होता था, वो सब चीज से अभी थोड़ा राहत मुझे है।
1: आप तो योग के बारे में बहुत कुछ जानती भी हैं और बहुत करती भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा से ये गाना उदित नारायण जी की आवाज़ में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का रोचक तथ्य।
1: आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, धूप यानी सूरज की रोशनी।
0: दोस्तों, धूप सिर्फ रोशनी और गर्मी देने का काम नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल अंकिता, क्या आप जानती हैं कि सूरज से निकलने वाले रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है? यानी हम जो सूरज देखते हैं ना, वास्तव में कुछ मिनट पुरानी रोशनी होती है।
0: हाँ बिल्कुल, यह सच में बहुत रोचक जानकारी है। अंबिका, क्या आपको पता है कि धूप हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल, धूप से हमारे शरीर में विटामिन डी बनने में मदद मिलती है, जो हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है। लेकिन तेज धूप में ज्यादा देर रहने से त्वचा को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है।
0: सही कहा। तो दोस्तों, धूप का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। पौधे सूरज की रोशनी की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस, और अपना भोजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया धरती पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: एक और रोचक तथ्य यह है कि सूरज वास्तव में एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और पृथ्वी को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत भी है।
0: तो सोचिए, अगर सूरज की रोशनी ना होती तो हमारी धरती कैसी होती? न दिन होता, न पेड़ पौधे, न जीवन संभव हो पाता।
1: बिल्कुल, सुबह की हल्की धूप हमारे मन को भी अच्छा महसूस करा सकती है। कई लोग सुबह की धूप में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि यह शरीर और मन के लिए फायदेमंद मानी जाती है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप धूप में जाएं, तो सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे विज्ञान और प्रकृति के इस अद्भुत उपहार को महसूस करें।
1: बिल्कुल, धूप हमारे जीवन की एक अनमोल किरण है जो हमें ऊर्जा, प्रकाश और जीवन देती है। तो अब सुनाते अपने श्रोताओं को।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना फिल्म बॉर्डर 2 से।
1: तो श्रोताओं, अब आपको सुनाएंगे आज का खेल समाचार बुलेटिन।
0: क्रिकेट में आज चर्चा का विषय है टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने आईसीसी बेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है।

0: उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से यह मुकाम दोबारा पाया है।
1: वहीं भारतीय क्रिकेट में भी युवा खिलाड़ियों पर नज़र बनी हुई है। नए चेहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलने से टीम इंडिया का भविष्य मजबूत दिखाई दे रहा है।
0: अब रुक करते हैं फुटबॉल की ओर। फीफा विश्व कप 2026 में रोमांच अपने चरम पर है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
1: फुटबॉल प्रेमियों के लिए मुकाबले लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं। कई टीम नॉकआउट दौर में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।
0: अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए एक अच्छी खबर है। टीम आगामी यूके दौर की तैयारी कर रही है, जहां वह अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करेगी।
1: खेल सिर्फ जीत हार का नाम नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी भी है। यही वजह है कि हर दिन नए खिलाड़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का खेल अपडेट। जुड़े रहिए हमारे साथ देश दुनिया की हर खेल खबर के लिए। आशा करती हूँ कि यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहता होगा। तो स्टूडियो की घड़ी कर रही है अब इशारा, हमारे जाने का समय हो चला है अंकिता।
0: तो अंबिका, हम भी जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि उन्हें हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर भेजें feedback@airpatna.gmail.com।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से सुनिए, हमारा मेल आईडी है feedback@airpatna.gmail.com। तो कहीं जाइए मत, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी के साथ।

0: आप अभी सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
3: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया है बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: घर सम्मानी कौशल्या देवी, खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं एलपी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर।
1: नमस्कार एलपी जी, और श्रोता भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने चरम पर है। विश्व के कई देशों के बीच हार जीत का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच मैच का आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। आने वाले क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच इससे भी ज्यादा आकर्षक और मजेदार होंगे, इस उम्मीद के साथ कि खेल बहुत बढ़िया होगा, रोचक होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें।
0: तो बिना देर किए बढ़ते हैं सेगमेंट खेल गतिविधियां में और जानते हैं बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में, साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 से। पिछले कुछ घंटे पहले दुनिया की नजरें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर बनी हुई थी, जब वह उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने मैदान पर उतरे थे। मैच की नाकामी, लगातार 10 बड़े मैचों में पुर्तगाल के लिए कोई गोल नहीं जैसी बातों को रोनाल्डो ने जश्न में उड़ा दिया। मैच के पहले ही हाफ में वह हैट्रिक मार सकते थे, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले उज्बेकिस्तान के डिफेंस ने उन्हें शॉट पर गेंद को गोल में जाने से ठीक पहले रोक लिया। रोनाल्डो इस मैच के पहले हाफ में अलग ही ऊर्जा के साथ दिखे। मैच की शुरुआत से ही उन्होंने न सिर्फ उज्बेक गोल पर हमला किया, बल्कि लंबे अंतराल के बाद वह मैदान के अंदर जोर लगाकर भागते भी दिखे। रोनाल्डो मैच की शुरुआत में ही जाओ कंसेलो के एक क्रॉस तक नहीं पहुंच पाए और इस तरह चूकने के बाद उन्होंने वैसी झुंझलाहट दिखाई जो कभी उनकी पहचान थी, और झुंझलाहट के कुछ ही देर बाद मैच के छठे मिनट में उन्होंने टूर्नामेंट का पहला गोल दाग दिया। इस बार रोनाल्डो ने कांसेलो के क्रॉस को बेहतरीन अंदाज में पहले प्रयास में ही जमाए शॉट के जरिए गोल में भेजा। इसके साथ ही वह 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए हैं। मैच के 17वें मिनट में पुर्तगाल की बढ़त 2 गोल की हो गई, जब डिफेंडर नूनो मेंज ने बॉक्स के ठीक बाहर फ्री किक को गोल में बदल दिया। इस फ्री किक के लिए मेंज के साथ रोनाल्डो भी खड़े थे। उज्बेक टीम को लगा कि रोनाल्डो शॉट खेलेंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए मेंज को मौका दिया और मेंज नहीं चूके। मैच के 30वें मिनट में उज्बेकिस्तान ने एक गोल वापस खींचा, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी VAR की जांच में पाया गया कि इस गोल के बिल्डअप के दौरान उज्बेक टीम ने पुर्तगाल के खिलाड़ी पर फाउल किया था और इसके चलते ये गोल अमान्य करार दिया गया। पिछले मैच के बाद रोनाल्डो को पास न देने के आरोप में प्रशंसकों की घोर आलोचना के केंद्र में रहे मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस ने एक बहुत खूबसूरत सा पास भगाते हुए रोनाल्डो के रास्ते में डाला और रोनाल्डो ने इसे पुराने दौर की तरह बड़े आराम से गोल में पहुंचा दिया।
0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग वर्ल्ड कप 2006, 10, 14, 2018, 22 और 2026 में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि लियोनेल मेसी भी 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ऐसा करने वाले वे दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं। लेकिन डियागो माराडोना की कोचिंग वाली अर्जेंटीना टीम के लिए 2010 के वर्ल्ड कप में वे कोई गोल नहीं कर पाए थे। साथ ही रोनाल्डो वर्ल्ड कप में एक से ज्यादा गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि 41 साल 138 दिन के हैं। इससे यह टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी का बनाया रिकॉर्ड टूट गया। वहीं कैमरून के रोजर मिला, जिन्होंने 1994 में 42 साल 39 दिन में कारनामा किया था, रोनाल्डो वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
1: चौथी बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे नॉर्वे ने पिछले दिनों सेनेगल को 3-2 से हराकर विश्व कप फुटबॉल के अंतिम 32 में जगह बना ली है। सेनेगल को अब इराक को 2-0 से हराना होगा ताकि तीसरे स्थान की टीम के रूप में अगले 2 दौर में जाने का मौका रहे। जूलियन रायरसन के चोटिल होने के बाद आने वाले मार्कस पेडरसन ने 43वें मिनट में गोल किया, जबकि हॉलैंड ने 48वें और 58वें मिनट में गोल दागे। हॉलैंड ने पहले ओडेगार्ड के पास बाएं पैर से शॉट लगाया, जिससे सेनेगल के गोलकीपर एडवर्ड ड्राइव लगाकर भी नहीं बचा सके। फिर हॉलैंड ने पैट्रिक बर्ग के पास गोल किया। सेनेगल के इस्माइल ने 53वें मिनट और इंजुरी टाइम में 2 गोल किए।
0: वहीं अल्जीरिया की टीम एक समय एक गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन फिर दूसरे हाफ में वापसी करते हुए उसने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल करके जॉर्डन को 2-1 से हराकर विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत कर ली। विश्व कप में 2014 के बाद अल्जीरिया की यह पहली जीत है।
1: और अब थोड़ी बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पिछले दिनों एक

0: से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने प्रो लीग के लंदन चरण की शानदार शुरुआत की है। भारत के लिए अभिषेक ने 22वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 24वें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 40वें मिनट में और रजिंदर सिंह ने 52वें मिनट में गोल किए। पाक की ओर से नदीम अहमद 8वें मिनट, महमूद अबू 53वें मिनट और शकील मोइन ने 60वें मिनट में गोल किए। खेल खत्म होने से 8 मिनट तक भारतीय टीम 4-1 से आगे थी। लग रहा था कि वह बड़ी जीत दर्ज करेगी, पर 7 मिनट के भीतर उसने 2 गोल गंवा दिए।
1: और अब जानते हैं निशानेबाजी के बारे में। भारत के 16 वर्षीय युवा निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। अपने दूसरे ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेल रहे पुणे के प्रीतम ने फाइनल में 251.3 अंक जुटाकर तथस्थ खिलाड़ी एलनिकॉफ को नॉर्वे के जेम्स ओस्टली को पीछे छोड़ा। हाल ही में कक्षा 10 की परीक्षा पास करने वाले प्रीतम क्वालिफिकेशन में 628.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। फाइनल में शुरुआती 2 सीरीज के बाद वह 6ठे स्थान पर खिसक गए थे, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण अपने नाम किया। उनके साथ ही पीयूष शीर्ष 3 में जगह बनाने से महज 0.1 अंक से चूक कर 4थे स्थान पर रहे। इस उपलब्धि के साथ भारत के पदकों की संख्या 11 हो गई, जिनमें 5 स्वर्ण शामिल है। वहीं महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में अंजलि भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला क्रिस्टोफर की तिगड़ी ने 1713 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। अंजलि 6ठे स्थान पर रही। अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल गतिविधियां में। आइए अब सुनते हैं वरिष्ठ खेल समीक्षक प्रेमचंद झा से फीफा विश्व कप 2026 पर की गई बातचीत। बात कर रहे हैं संजय किशोर।
0: आज फोन लाइन पर हमारे बीच उपलब्ध हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ प्रेमचंद झा। प्रेमचंद झा जी से आज हम बातचीत करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।
0: स्वागत के साथ हम जानना चाहेंगे कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खेल पूरे विश्व में अपने चरम पर है, कई नए रिकॉर्ड बन चुके हैं और कई अभी बनने बाकी हैं, तो हम एक शुरुआत करना चाहेंगे उस टिप्पणी से जो आप देना चाहेंगे हमारे श्रोता के लिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की वर्तमान स्थिति कैसी है।
2: देखिए, फीफा वर्ल्ड कप की वर्तमान स्थिति की यदि आप बात कीजिएगा तो अभी हमारा लीग चरण का मैच चल रहा है और लीग चरण में आज तक 48 मैच हो चुका है और 24 मैच लीग चरण में होना भी बाकी है। उसके बाद 29 तारीख से नॉकआउट हमारा स्टार्ट होगा जिसमें 32 टीमें खेलेगी। अभी इस बार पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेल रही हैं।
0: जी, तो इसमें कुछ टीमों की संख्या पिछले खेल आयोजन की तुलना में बढ़ी है, जो इसका इस बार का 22वां संस्करण है, तो इसमें जो टीमें बढ़ी हैं बस यही एक नयापन है या कि कुछ और भी विशेष बात है जो आप अपने?
2: नहीं, देखिए बाकी सब कुछ वही है। फीफा वर्ल्ड कप में पहले 32 टीमें खेलती थी। खेल के फुटबॉल के व्यापक हित को देखते हुए तथा विश्व लोकप्रियता को देखते हुए इस बार पहली बार 16 टीमों की संख्या बढ़ाई गई और इस बार 12 ग्रुप बनाया गया और हर ग्रुप में 4-4 टीम रखा गया और ये निश्चित किया गया कि हर ग्रुप से 2-2 टीमें नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी 24 टीमें, और 8 टीमें जो थर्ड प्लेस पर रहेंगी जिनका स्कोरिंग पैटर्न लूजिंग पैटर्न वगैरह बेहतर होगा वो 8 टीमें क्वालिफाई करेगी, यानी आप नॉकआउट चरण में 32 टीमें खेलेगी और उसके बाद फिर आपका प्री क्वार्टर फाइनल में 16 टीम, यानी 29 तारीख के बाद टीमों के बीच करो या मरो की स्थिति हो जाएगी। अभी तो आप हार जीत रहे हैं तो आपकी चांसेस बनी हुई हैं, लेकिन 29 तारीख के बाद हर टीम को अपना सब कुछ झोंक देना होगा वरना वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
0: तो एक प्रकार से ये पिछले आयोजन की तुलना में एक नया नियम बनाया गया या नया नियम के तहत खेल को ज्यादा लंबा, ज्यादा समय तक और ज्यादा रुचिकर, ज्यादा टीमों को भागीदारी देने के ख्याल से किया गया होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, यही दृष्टिकोण का और फीफा का यही उद्देश्य भी है। फीफा देखिए, आप जानते हैं कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और अभी करीब करीब आपको हम बता रहे हैं कि अभी वर्ल्ड में 175 देशों में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है।

0: और इतनी बड़ी जनसंख्या विश्व की इस मैच को देख रही है जो अन्य किसी भी खेल में नहीं देखा जाता है। ओलंपिक से भी ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं।
1: जी सही कहा, खेल के आयोजन में जैसे ओलंपिक को हम लोग खेलों का महाकुंभ कहते हैं, इसको फुटबॉल का महाकुंभ कह सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इस फुटबॉल के महाकुंभ में मुझे लगता है कि सबसे अधिक दर्शक हैं और पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में इसे देखा जा रहा है बहुत रुचि के साथ। और ये जो फास्ट गेम है फुटबॉल का, इसमें लोग एकदम उत्साहित होकर लगता है कि खुद ही मैदान पर हैं, ऐसा भाव रखते हैं।
0: 90 मिनट में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है।
1: जी
0: 90 मिनट में आपको स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस
1: जी
0: सब कुछ आपको 90 मिनट में, और वो भी वर्ल्ड क्लास का, तो
1: वर्ल्ड क्लास।
0: आप नहीं सोच सकते हैं। ऐसा ऐसा गोल होता है, अकल्पनीय गोल जिसको कहते हैं, अकल्पनीय गोल, अकल्पनीय बचाव, बचाव गोलकीपर के द्वारा, ऐसा विहंगम और इतना सुंदर खेल आपको 4 साल के बाद ही देखने को नसीब होता है।
1: सही कहा। तो हमारे भारतीय दर्शकों की भी नजरें गड़ी रहती हैं, क्योंकि इस आयोजन में प्रत्येक टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। विश्व स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं, ब्राजील हैं या अरेबियन कंट्रीज से हैं या यूरोपियन कंट्रीज से हैं, उनके खेल की जो गुणवत्ता है बहुत उच्च स्तर की होती है। तो वो जो उच्च स्तर का खेल देखने को मिलता है, वो सचमुच में 4 साल में देखने को मिलता है। भारतीय दर्शकों पर या भारतीय खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से हमारे ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, आप कुछ बता पाए?
0: नहीं नहीं बिल्कुल हम बता रहे हैं। एक तो हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय टीम नहीं भाग ले पाती है। वर्ल्ड कप का इतिहास यदि आप पलट करके देखिए, 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी और 1930 से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से लेकर आज तक सिर्फ 1950 में भारतीय टीम को जो ब्राजील में आयोजन हो रहा था उसमें खेलने के लिए इन्वाइट किया गया था, क्योंकि उसमें जो 3 टीमें थी, खास करके म्यांमार, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इसके एथलीट हो जाने के कारण हमको खेलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन तत्कालीन कुछ ऐसी स्थिति हो गई और हमारा फेडरेशन ने प्रायोरिटी सिलेक्शन प्रोसेस और एक सोच और संसाधन की कमी के हुए टीम को नहीं भेजा। उस समय हमारी टीम मजबूत थी। आपको बताते चले कि 1948 में लंदन ओलंपिक्स में भी भारतीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा था, और 1956 में तो मेलबोर्न ओलंपिक में हम चौथे स्थान पर पहुंचे थे। 1950 में जब हमको बुलाया गया था तो 1951 एशियन गेम्स में हमने ईरान को, जो अभी वर्ल्ड कप में कड़ी टक्कर दे रही है, उस टीम को फर्स्ट एशियन गेम में हमने 2-0 से मार करके गोल्ड मेडल जीता था। 1962 एशियन गेम में भी हम गोल्ड मेडल जीते थे। 1964 में भी इंडियन फुटबॉल ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 1950 से लेके 1965 तक का जो पीरियड था इंडियन फुटबॉल के लिए, वो गोल्डन पीरियड था। और उस समय 1950 में हमारे फेडरेशन को यदि वर्ल्ड कप में भाग लेती तो आज हमारा इंडियन फुटबॉल का तस्वीर ही कुछ और होता, और आज निश्चित रूप से हमारा फुटबॉल जो आज इतना पिछड़ गया और वर्ल्ड रैंकिंग में अभी हम 136वें पोजीशन पर चल रहे हैं, 1996 में हम 94वें पोजीशन पर थे। लेकिन खैर, अभी फेडरेशन ने एक विजन डेवलप किया है और उनका एक टारगेट है 2047 का विजन, और हमारी अंडर 17 और अंडर 20 की टीम स्ट्रांग है, सरकार और सिस्टम इस पर काम कर रही है। हमको ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में भारतीय टीम आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेगी।
1: जी बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से आपने इस चीज को समझा और हमारे श्रोता के लिए रखा। इन सारी बातों से हम भी दो चार होते रहे हैं, लेकिन नए श्रोता के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि भारतीय फुटबॉल टीम की क्या स्थिति रही है और कब कब हमने विश्व स्तर पर खेल खेला और बड़ी टीमों को गोल भी दिया है। तो अभी जिस स्थिति में फुटबॉल है, उसमें आप एक आशा की किरण देख रहे हैं कि सरकार के पास एक विजन और मिशन की शुरुआत हुई है, और इसके साथ ही आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ी फुटबॉल को लेकर भी उत्साहित होंगे। अभी हमारे पास समय है, आने वाले फिर अगले 4 साल के लिए क्या कुछ तैयारी हो सकती है जिसमें कि हमारी प्रतिभागिता हो सके, या फिर अभी और लंबा समय लगेगा?
0: नहीं, संजय जी, अभी हमें लंबे और सफर पड़ जाना है। 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को फुटगा

0: पुर्तगाल स्पेन ये तीनों संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम नहीं हिस्सा ले पाएंगे। 2034 में जो सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें भी हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारा अपना ऐसा ओपिनियन है कि फेडरेशन ने और सरकार ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, और आपने कहा ही कि एक विजन और एक मिशन फुटबॉल को लेकर के हमारे पास डेवलप हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि 2050 तक हमारी टीम जरूर खेल जाएगी।
1: तो अभी हमारे पास

0: के हमारे पास डेवलप हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि 2050 तक हमारी टीम जरूर खेल जाएगी।
1: तो अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: अभी हो सकता है कि इस बीच जो हमारी एक नई पौध तैयार होगी, नई पीढ़ी आएगी, वो फुटबॉल को लेकर उतना ही गंभीर और उत्साहित होगी जैसा कि हम क्रिकेट को लेकर करते हैं या सोचते हैं या जीते हैं। तो फुटबॉल विश्व स्तर पर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बेहतर हो रहा है और बेहतर की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश है, इसमें भी बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे, और आशा के अनुरूप अगले कुछ सालों में, भले ही वो लंबा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक अच्छी टीम विश्व स्तर की बनेगी। कुछ बात हम आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि यूरोपियन टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है, और इसके साथ साथ कुछ अरेबियन और अफ्रीकन जो टीम है वो भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। आपकी नजर में अभी कौन सी टीम ज्यादा काबिल और दावेदार नजर आ रही है?
0: देखिए, हम आपको बता रहे हैं, मेरा ओपिनियन जो है, मेरा फुटबॉल से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, और पिछले करीब करीब 5 फीफा वर्ल्ड कप का मैंने एक एक मैच देखा है, और अभी भी लीग चरण का सारा मैच मैं देख रहा हूँ।
1: जी
0: जहां तक मुझे उम्मीद है, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, हॉलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम और पुर्तगाल, ये 10 ऐसी टीमें हैं जिनके बीच ही खिताबी मुकाबला होना तय है। और आप देख लीजिएगा संजय जी, यही टीमें आपको क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल खेलते हुए नजर आएगी, ये मेरा पक्का दावा और मेरा विश्वास है।
1: जी आपका विश्लेषण बहुत उच्च स्तर का है, क्योंकि आपने अपने अनुभवों से 5 फीफा वर्ल्ड कप को बहुत गहराई से देखा है, एक एक मैच देखा जैसा कि आपने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इनके खेलों को आपने बहुत गहराई से महसूस भी किया होगा, और इसी वजह से आप आज ये कहने में सक्षम हैं कि ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल भी खेलेगी टीमें, और फाइनल में किसी न किसी रूप में इनमें से ही कोई टीम फीफा
0: हाँ
1: वर्ल्ड
0: बिल्कुल
1: कप की
0: बिल्कुल
1: दावेदार
0: बिल्कुल
1: बनेगी।
0: बिल्कुल
1: तो ये बहुत ही रोचक है आने वाला समय। हम चाहेंगे कि इस पर हम आने वाले समय में कुछ और भी बातचीत करेंगे आपसे, और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो भी टीमें हैं वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में दावेदारी सबकी पुख्ता होगी, बहुत ही आकर्षक और मजेदार होगा खेल, और भारतीय खिलाड़ी अब इन खेलों को देखकर प्रेरणा लें और आने वाले समय में अपनी दावेदारी भी करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की बातचीत के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: आपका भी बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद पंडित जी।
2: आज रोचक तथ्य में जानेंगे फीफा से जुड़ी रोचक बातें। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख न्यूजीलैंड में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन है। ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सभी फीफा विश्व कप संस्करणों में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही इसने सबसे ज्यादा बार, यानी कुल 5 बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इस वर्ष इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसकी मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 1958 के विश्व कप में फ्रांस के जस्ट फोर्टेन ने एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक अटूट है। ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले ने 1958 में केवल 17 साल और 249 दिन की उम्र में विश्व कप फाइनल में गोल किया था। वे फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गोल्डन ट्रॉफी, असली फीफा विश्व कप ट्रॉफी, जो कि सोने से बनी है। इसमें 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 6.175 किलोग्राम है। इसके निचले हिस्से पर केवल विजेता देशों के नाम लिखे होते हैं। फीफा विश्व कप के फाइनल को दुनिया भर में एक ही समय पर करोड़ों लोग लाइव देखते हैं, जिससे यह ओलंपिक के मुकाबले भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एकल खेलों के आयोजनों में से एक है। अब खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। सबसे पहले पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, फीफा विश्व कप में एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड किनके नाम है?
1: सही जवाब है, फीफा विश्व कप में एक ही टूर्नामेंट में फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन ने 1958 फीफा विश्व कप में सिर्फ 6 मैच में 13 गोल किए थे।
2: और दूसरा प्रश्न था, भारतीय महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2026 किनकी अगुवाई में खेल रहा है, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है?
1: सही जवाब है, भारतीय महिला क्रिकेट T20

0: विश्व कप 2026 में भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, इनकी अगुवाई में ये टीम खेल रही है।
1: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे आप हैं नेहा श्रीवास्तवा राजेंद्र नगर पटना से, प्रकाश कुमार गायघाट से हैं और आस्ती कुमारी हैं राजेंद्र नगर से। आप सभी का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि हमें रहता है आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार। तो अब फटाफट नोट करें आज के दो प्रश्न। क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को कौन सा सम्मान अभी हाल ही में मिला है?
0: सवाल एक बार फिर से बता रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को कौन सा सम्मान अभी हाल ही में मिला है?
1: और दूसरा प्रश्न, पहला फीफा विश्व कप कब और कहां आयोजित हुआ था?
0: सवाल एक बार फिर से सुनिए, पहला फीफा विश्व कप कब और कहां आयोजित हुआ था?
1: इन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास एक सप्ताह का समय है, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए आप चाहें तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं अपने जवाब। तो फटाफट नोट करें पत्राचार का पता।
0: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
1: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। और चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: इसी के साथ इस खेल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपसे विदा लेंगे इस बात को कहते हुए कि फीफा वर्ल्ड कप अपने चरम पर है और आप इस आयोजन का बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। आगे और भी आकर्षक मैच होने वाले हैं, तो खेल के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मन्नन अली के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
1: और एलपी को
0: आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आपने अभी सुना कार्यक्रम खेल परिक्रमा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता, ये जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। शाम 6:10 पर फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से शाम 6:20 पर।

6:30 पर ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल होगा और 7 बजे हम चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की। प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे 7:30 पर। सात बजकर 47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल और 7:52 पर समाचार ध्वनि चित्र।

फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 8 बजे, रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे 8:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का वक्त है 8:45 पर। समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

9:15 पर उर्दू समाचार खबरें, रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। केंद्रीय चयन सरसद आज पूरा प्रदेश में अलग अलग केंद्र पर बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा दो पाली में आयोजित कैलस। एकरा के लेके सुरक्षा के तगड़ा इंतजाम कल गई। सब केंद्र पर मजिस्ट्रेट के देखरेख में पुलिस बल तैनात कल गई। एने रेलवे परीक्षार्थी लोगन के सुविधा खातिर कई गो स्पेशल ट्रेन चला रहल बा। राज्य सरकार हर महीना के आखिरी इतवार के पंचायत विकास दिवस मनावे के फैसला कैले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिला की एगो चुनल गेल पंचायत से 28 जून के एक कार्यक्रम की शुरुआत करी हैं। एकर मकसद गांव के विकास योजना के समीक्षा कैल और आम लोगन के भागीदारी से पंचायतन के लगातार और पूरा विकास के बढ़ावा देवल बा। कार्यक्रम के निमन तरीका से आयोजन खातिर सब जिलन के जरूरी निर्देश जारी कर दिया गेल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एगो जरूरी बैठक कल गई। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलल जानकारी के मुताबिक सांझ के 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक भइल। बैठक में कई गो अहम प्रस्ताव पर चर्चा भी कल गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़े कि राज्य में कानूनन के राजबा। श्री तिवारी कहनी कि भोजपुर मुठभेड़ मामला में न्यायिक जाँच के आदेश दिहल गेल बा और शुरुआती जांच में लापरवाही सोझा अइला पर पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई कल गई बा। श्री तिवारी कहनी कि विपक्ष के मुद्दा पर राजनीतिक छोड़ के जांच रिपोर्ट के इंतजार करे के चाहे। एने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी कहले बाड़े कि हाल ही में भयल मुठभेड़ के सब मामलन के जाँच होखे के चाहे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहले बाड़े कि राज्य में भू सुधार के काम जारी रही। वहाँ के कहनी कि सरकारी जमीन के हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त करावल जाए। श्री जायसवाल आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करत बतौले कि पीर 35 पावर प्लांट CNLU निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत अलग अलग जगहन पर निर्माण काम खातिर जमीन उपलब्ध करा दिया गया बा। वहाँ के कहनी कि भूमि प्रबंधन के और पारदर्शित बनावत एकर लाभ हर आदमी तक पहुँचावे के काम कल जा रहल बा। राजधानी पटना में गीग वर्कर्स खातिर अत्याधुनिक AC लाउंज के सुविधा शुरू हो गई बा। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के लगे बनावल गई विशेष AC लाउंज के जायजा लिहले। लाउंज में साफ पिए के पानी मोबाइल चार्जिंग समेत कई गो सुविधा दिहल गई बा। पटना देश के तीसरा ऐसा शहर बा जहाँ गीग वर्कर्स खातिर विशेष

0: एसी लॉन्च के सुविधा तैयार कल गई बा। प्रदेश के उत्तर हिस्सा में मानसून के सक्रियता से बरखा के दौर जारी बा। मौसम विभाग आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य इलाका में आंधी पानी के अलर्ट जारी कैले बा। ए दौरान कई जगह पर वज्रपात की आशंका भी बा। एने भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में कड़ाके के गर्मी पड़ रहा बा। रोहतास जिला के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसै परिसर में आज भी 1355 महिला सिपाही लोग पासिंग आउट परेड में शामिल भैली और नया जिम्मेदारी के साथ शपथ लिहली। बीसै 2 के समादिष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह परेड के निरीक्षण कैली। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से जुड़ल ई महिला सिपाही लोग सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरा करके अपन जिम्मेवारी संभाली। राज्य में तेज गर्मी के देखत सासाराम रांची इंटरसिटी समेत कई गो ट्रेनन के 28 जून तक रद्द कर दिया गया बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।

एजेंट विनोद में आइए सुने अरिजीत सिंह को, अमिताभ भट्टाचार्य का संगीत, माफ कीजिएगा, अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत को धुन दिया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना एजेंट विनोद का ये खूबसूरत सा गाना। इस गाने को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की थी प्रीतम ने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढतया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षास्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षा परामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिम सूचना पर्यन्तम् अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः सम्बन्धस्य सुदृढीकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढतया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधिद्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रियारूपेण एषा टिप्पणी कृता।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रियारूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयत् च। भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य 80 संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमानसमीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्णसंस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरानदेशस्य परिष्कृतसुरक्षास्थितिं वीक्ष्य

0: तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुं अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईरान निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210115, 9891210119। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद् नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमे एकेन संदेशेन विदेश मंत्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्क इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य एकोनत्रिंशत् दिनांक पर्यन्तं मेघालये आन्तरिक कर्नाटके ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिम बंग प्रदेशे सिक्किम राज्ये

0: च प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासर पर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, आन्ध्रप्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखण्डे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्यप्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तम् एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं चतुर्विंशति सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य पञ्चदिनाङ्कादारभ्य चतुर्दश दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु सप्त द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामी कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् एकं शून्यम् इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार मीनू बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन। तो बताएं क्या हाल समाचार बटे?
0: हाल तो ठीक ठाक है। अब कल रात जो बारिश हुई उससे तो बहुत ही मजा आया, लेकिन फिर सुबह जब उठे तो उसी तरीके की कड़ाके की धूप, गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा था
1: गर्मी तो इतना प्रचंड पड़ रहल बाटे कि एकरा में अगर काम नहीं खे तो बाहर ते दमे ना निकली।
0: और ये जो दोरस मौसम है ना, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ?
0: ध्यान तो हर बातों पर देना जरूरी है। अब देखिए ना, बताओ, एक महिला है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने ऐसे ही मेरे रिलेशन में है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने कुछ मंगवाया होगा
1: अच्छा ऑनलाइन
0: ऑनलाइन मंगवाया,
1: सामान
0: हाँ, और उन्होंने पे किया,
1: अच्छा
0: ऑनलाइन ही पे किया,
1: हाँ।
0: और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अकाउंट के सारे पैसे ही निकल गए उनके।
1: देखिए आजकल तो ये साइबर अपराध अपराध बहुत हो रहल बाटे,
0: बहुत ज्यादा,
1: बहुत ज्यादा। आ तरह तरह के कॉल भी आ रहल बाटे,
0: हाँ,
1: जे नंबर वर नहीं खी जानत उ नंबर के एकदम में मत उठाई। आ ऐसन होता कि जे उ फोन के मतलब उठा लेत बा, थोड़ा सा भी अगर उधर से कोई हेलो भी कर देता तो ऐसन का होता कि उनका अकाउंट के पैसा एकदम गायबे हो जाता।
0: वही तो। ये इससे ना एक जो डर है वो कुछ ज्यादा हो गया। जैसे हम कहते हैं कि हम आधुनिक दौर में हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हम हैं इस दौर में,
1: हाँ
0: लेकिन हमारे जो रिस्क है ना वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। पहले
1: एकदम
0: जितने
1: एकदम
0: चैन चैन सुकून से रहते थे,
1: हाँ
0: उतना चैन सुकून शायद अब नहीं है। अब हर एक बात में हम कुछ ना कुछ ये
1: हाँ
0: सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए
1: हाँ
0: जिससे कि प्रॉब्लम हो। और
1: अच्छा
0: ऐसी समस्या होती है तब हमें लगता है कि अरे, हम जितने ज़्यादा आधुनिक दौर में हैं, डिजिटलाइजेशन हुई है, उतना ही इसका नुकसान भी है, लेकिन नुकसान से बचा भी जा सकता है।
1: सही कहते नहीं कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट होके मोबाइल बैंकिंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन खरीदारी हमने सबन के जीवन के एगो बहुत ही खास हिस्सा हो गइल बा। कोनो काम बाटे बस फट से मोबाइले से पैसा भेज देना बा, चाहे हम 5 रुपया के बिस्कुटे का है।

0: नेखी खरीदत
1: हम्म।
0: तो ओकरो खातिर मतलब कि पैसा चेंज नेखी रखत घर में, ऐसा होता कि ओकरा खातिर हम ऑनलाइन के ही यूज करतनी, उपयोग करतनी। और इस तरीके से हम आपन जीवन के बहुत सरल तो समझ गेल बानी, पर एकर हानि का होता, साइबर जो अपराध हो रहल बा, जेकरा कारण 2-5 रुपया जे हम अपना जेब से ना निकाल के मोबाइले से देतनी, ओकरा कारण कितना तरह के नुकसान होता कि
1: नुकसान तो वो है ही मीनू बहन।
0: हाँ
1: उसके साथ साथ पहले क्या होता था कि हम पैसे निकाल लेते थे, तो एक एक जो घर घर की बात है कि सब्जी
0: हाँ
1: के लिए इतना निकाल लिया, राशन के लिए इतना निकाल लिया, ऐसे
0: हाँ
1: आम खर्च के लिए। लेकिन ये जो आधुनिक दौर है, इसमें हमारे खर्च हम खुद ही कितना कर दे रहे हैं
0: एकर
1: हमें
0: पता
1: पता
0: भी
1: भी नहीं
0: नहीं
1: चल
0: खेचलत।
1: रहा।
0: हाँ ये तो सही बात बा
1: और
0: कि
1: ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी प्रलोभन वाले ऐसे मैसेजेस भी आ जाते हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: आप अभी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, या इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं। तो जिनको इसके बारे में जागरूक जो लोग नहीं हैं, वो क्या
0: हाँ
1: करते हैं,
0: हाँ
1: अरे पैसे आ जाएंगे, चलो क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि फिर या तो मोबाइल हैकिंग हो जाती है, या इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे पर्सनल डाटाज होते हैं वो चले जाते हैं, जो कि
0: अभी तो
1: सार्वजनिक तौर पे
0: देखी
1: नहीं होने
0: इस
1: चाहिए।
0: तरीके के साइबर अपराध से कितना तरह के एग्जाम जे कि वो भी हो जाता, तरह तरह के बचपन सबके कितना नुकसान हो रहल बाटे। तो देखी साइबर अपराध तो बहुत ही मतलब समझी कि ये बहुत सबके मुश्किल में डाल देता। साइबर अपराध से बचाव खातिर सबसे प्रभावी और प्रभावित तरीका का बा कि सबसे पहले तो सब लोग जागरूक हो जाएं और
1: हाँ
0: सावधानी के बरती, इंटरनेट के उपयोग करते समय एकदम सतर्क रहीं और आपन व्यक्तिगत जो जानकारी बा उस सब से साझा एकदम ना करी
1: जैसे
0: आपन।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना, जैसे ओटीपी आ गया, ओटीपी हर एक बात में जो जरूरी होता है तो उसमें ओटीपी आता है, पिन आता है, पासवर्ड या बैंक खाते का विवरण, वो कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। वहीं ईमेल हो, मैसेज हो,
0: हाँ
1: सोशल मीडिया पर आए किसी भी संदिग्ध या लुभावने लिंक, जैसे मैंने बताया ना कि अभी 5 लाख आ जाएंगे या जो भी है, वो क्लिक ना करें।
0: हाँ
1: ऑनलाइन अकाउंट जैसे ईमेल और सोशल मीडिया पर ये 2FA सक्षम करें, ताकि कोई भी और आपके अकाउंट में लॉग इन ना कर सके, मतलब आपने लॉग इन किया, लॉग आउट आप ही कर सके।
0: आ देखिए अगर साइबर अपराध के शिकार हो गइल बानी कोनो तरीके से तो घबराई मत, तुरंत आपन संबंधित बैंक बा या संस्था बा वहाँ जाके सूचना दीं आ सभन पासवर्ड के तुरंत बदल दीं।
1: ये तो है ही।
0: सबूत के रूप में ओकरा जे भइल बा ओकर स्क्रीनशॉट मतलब कि ओकर फोटो खींच लीं।
1: हाँ ये है ही। साथ ही साथ हम बहुत जगह जब जाते हैं तो सार्वजनिक तौर पे वाईफाई भी हमें मिल जाता है और हम बड़े खुश होते हैं
0: कि हाँ हमरा
1: वाईफाई मिल गया। लेकिन वाईफाई का भी इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करें, और उस समय जब आप पब्लिक के किसी वाईफाई को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग बिल्कुल ना करें।
0: आ देखिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन भी बाटे,
1: हाँ
0: 1930 पर शिकायत कर सकीला।
1: हाँ तो ये तो शिकायत हम कर सकते हैं किसी भी तरीके। अब जैसे बैंक से संबंधित अगर कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें, ऐसा नहीं कि अच्छा आज तो ऐसा हुआ चलो कल जाएंगे। और ये इस तरीके की जो वारदातें होती है, इस पे बहुत ही सचेत होकर, सतर्क होकर के वो काम करना
0: देखिए
1: चाहिए।
0: ऑनलाइन खरीदारी में भी सतर्क रही, कभी कभी तो ऐसा होला कि पहले पैसा मांगल जला, पैसा दिला गई अकवाद सामान घरे ना आयल, ऐसा भी होला। तो इस सब से बची जे वेबसाइट रउआ बुझाता कि हाँ एकरा पर हम भरोसा कर सकीला ओकरे से खरीदारी करी। और जैसन कि रउआ कहनी कि वाईफाई के यूज कहाँ करना बा, और भी बा ऐसा सोशल मीडिया पर भी सावधानी बरती, आपन निजी जानकारी केकरो ना बताई जो भी
1: अब
0: बा।
1: जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि आज आज बर्थडे है,
0: हाँ
1: आज मैरिज डे है, आज
0: हाँ
1: मैंने यहाँ ट्रैवल मैं करने जा रही हूँ, या इस
0: हाँ
1: तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप सोशल मीडिया पे तो डाल दिया आपने, और इससे आप के पीछे कौन है, क्या वारदात करने वाला है, उसके लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है।
0: देखिए ऐसे में बहुत

0: लोग होला फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह अपन बारे में मतलब एकदम ढिंढोरा पीट के जानकारी दे देवेला लोग, और ओकर बाद जब लुटा जाला तो बुझाला कि हम का कर देनी। तो
1: वही
0: ये सब
1: बात।
0: चीज़ से तनी सतर्क हो जाई। साइबर अपराध तो होते बा, लेकिन ई अपराध खातिर जागरूक होना बहुत जरूरी बा।
1: ताकि ये अपराध बढ़े नहीं, और ये जितनी भी बातें हमने कही आप श्रोता ज़रूर सुन ही रहे होंगे, और मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आपके पास पहले से होगी, और जानकारी अपने मार्फत हम जिन विषयों पर बात करते हैं तो चाहते हैं हमसे जितना बन पड़े हम वो जानकारी
0: हाँ।
1: दें। और
0: देखिए प्रिया बहन, एक बात और कहे के चाहते नहीं, जिसन की रोवा कहनी कि अपराध तो दिन प्रतिदिन बढ़ते बा, ऐसा भी होता कि बहुत लोग कहीं से सामान खरीदलक और अपन मोबाइल से पैसा देलक, ओकर बाद भी फिर से ओकरा पास ई खबर आता कि ओकर पैसा वहाँ तक नहींखे पहुँचल, जबकि वो पैसा जा चुकल बा। एकरा खातिर उनका बैंक जाके फिर उ खा मतलब इस तरह के जो अपराध हो रहल बा, एकरा खातिर जो व्यक्ति पैसा देले बा वो परेशान होता, बैंक में भी जाके ओकरा परेशानी के सामना करे पड़ता। तो ई सब चीज़ से थोड़ा बची और अपना आप के सुरक्षित रखी, हो सके तो कोशिश करी कि हम कहे ना पैसा ही हाथ में रखी, ओकरे से
1: छोटे छोटे
0: खरीदारी
1: जो
0: करी।
1: खर्च हैं
0: हाँ
1: वो उस तरीके से कर सकते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे अगर सतर्कता होगी तो ये अपराध नहीं होगा।
0: हाँ
1: तो किसी भी तरीके की जो बताया हमने कि अपने पर्सनल अपने जो चीज़ें हैं, जो पासवर्ड वगैरह हैं, इसे अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी साझा ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि
0: हाँ
1: किस तरीके से, अब एटीएम गए, अब एटीएम में अगर पिन जनरेट करना है तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, तो जो वहाँ है आप उनसे पूछें जो ऑथराइज्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी वहाँ पर आया हुआ है कोई अनजान व्यक्ति, आप उससे पूछे, पता चला उसने,
0: कि
1: ऐसे में
0: हाँ
1: बहुत
0: रहुए
1: फ्रॉड
0: के
1: होता है।
0: लूट ले लग।
1: तो मिला जुला करके ये कहना है, ये सारी जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि हम और आप इस साइबर अपराध से बच सकें।
0: देखिए प्रिय बहन, साइबर अपराध के ढेर मनी प्रकार भी बाटे। सबसे पहले तो फिशिंग के बात करी, एकरा में भी अपराधी नकली ईमेल संदेश या वेबसाइट के माध्यम से बैंक खाता के पासवर्ड, ओटीपी और भी गोपनीय बात के छुपावे वाला जो भी जानकारी बाटे उ सबन के जानकारी हासिल करे के कोशिश कर लेवेला। तो एकरा खातिर हमने के सतर्क रहना बा। तो बहुत नीमन बात भइल, अभी जो ई अपराध बहुत ज्यादा हो रहल बाटे,
1: हाँ, उसे रोकना हम सभी का मुझे लगता है
0: कर्तव्य
1: कि
0: बाटे।
1: कर्तव्य क्या, ये हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा हो या जानकारी हो, ये हमारे पास ही रहे हमारी तो अच्छी बात है।
0: तो साइबर अपराध से बची और लोग के भी जागरूक करी
1: हाँ,
0: और आपन धन के संभाल के रखी।
1: तो इसके साथ ही साथ हमने बातचीत इतनी की, अब जैसा कि आपको इंतज़ार रहता है कि हम लोकगीतों को ज़रूर आपके पास पेश करेंगे, तो सुनते हैं ये प्यारा सा लोक भजन
0: शैलेंद्र कुमार सिंह से।

0: वाह, बहुत निमन इलोक भजन रहे शैलेंद्र कुमार सिंह के आवाज में हमने के सुने। एक से आगे भी और भी गीत सुने के।
1: बिल्कुल। और मतलब मनोरंजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शाम की बेला है, और शाम की बेला में हम चाय की
0: भजन
1: चुस्की
0: उजन
1: लेते हैं, और साथ ही साथ जब संध्या देते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, तो ऐसे में भजन होना बहुत ही जरूरी
0: जरूरी
1: है।
0: बैठे।
1: और इसके साथ ही हम कुछ ना कुछ अपने किसी विषयों पे तो बात करते ही हैं, मनोरंजन भी करवाते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं
0: हाँ
1: कि आपको कुछ विशेष जानकारी अपने विशेष जो मेहमान हैं उनसे दिलवा सकें।
0: तो चलिए एकरे पर आज हमनी के एगो भेंट वार्ता सुन लेवल जाओ। भेंट वार्ता के विषय बा विटामिन बी एवं डी की कमी। भेंट वार्ता कार बाड़न डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर और भेंट कर्ता बाड़न श्रीनिवास सहाय।
2: शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पोषक तत्वों की कमी से होती है, विटामिन की कमी से होती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उसके लिए दूसरे तरह की दवा लेते हैं। तो शरीर में दो विटामिन्स की आवश्यकता बहुत होती है, एक है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन B12। दोनों की कमी से कौन कौन सी परेशानियां हो जाती हैं और कैसे इसे दूर करेंगे, इस संबंध में आपको पूरी जानकारी दिलवाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, इसका हमारे शरीर में किस तरह का कार्य होता है।
3: धन्यवाद। विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका मेन रोल होता है शरीर के हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने का, और
2: जी
3: छोटे छोटे उम्र से लेकर बुढ़ापे तक के शरीर और मांस और हड्डी के लिए, शरीर के मांस और हड्डी दोनों की मजबूती के लिए

0: हमेशा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और ये कैल्शियम की पूर्ति विटामिन डी के सफिशियंट मात्रा में शरीर में रहने के चलते होता है। तो यदि विटामिन डी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो जो कैल्शियम हम खाते हैं उसका सही रूप से शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
1: तो विटामिन डी की कमी से परेशानी किस तरह की होती है?
0: हाँ, दो तीन तरह की परेशानी मुख्य रूप से होती है। जैसे छोटे बच्चों में उसके मांस में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होने लगता है और उसको चलने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी बच्चा जो सीवियर स्टेज में जाता है तो चल भी नहीं पाता है या लंगड़ा के चलता है, जिस बीमारी को हम लोग रिकेट्स बोलते हैं, वो इसकी कमी के चलते होता है। और सियाने लोगों में, वयस्क लोगों में भी इस तरह का सिम्टम आता है, लेकिन उतना सीवियर नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें मसल पेन

0: की कमी के चलते होता है। और सियाने लोगों में, वयस्क लोगों में भी इस तरह का सिम्टम आता है, लेकिन उतना सीवियर नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें मसल पेन होता है, क्रैम्प होता है, और पूरे बॉडी में हमेशा दर्द होते रहता है। एक तीसरी बीमारी भी होती है जो कि 60-65 के अबव एज में ज़्यादा होती है, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी के चलते होता है। यही
1: अब
0: मुख्य तरह से तीन बीमारियां हैं इसके।
1: विटामिन डी की कमी से जब इतनी परेशानियां होती हैं, तो विटामिन डी का सोर्स क्या है? कैसे इसे हम प्राप्त करेंगे?
0: हाँ, किसी भी खाने पीने के सामान में विटामिन डी नहीं मिलता है। थोड़ी सी मात्रा डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है जो कि फोर्टिफाइड होता है। तो मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने से मनुष्य के त्वचा में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, और उसी से पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। लेकिन आजकल का जो परिस्थिति है, लोग धूप में नहीं रहते हैं, या कुछ पोल्यूशन के चलते अल्ट्रा वायलेट रे भी सफिशेंट मात्रा में शरीर पर नहीं पड़ता है, इसलिए विटामिन डी की कमी मेजोरिटी पॉपुलेशन में 80-90% लोगों में है। इसलिए उसको हम लोग बाहर से मेडिसिन के रूप में सप्लीमेंट करते हैं।
1: अब मेडिसिन की बात होती है, तो बिना जांच कराए तो मेडिसिन हम ले नहीं सकते हैं।
0: नहीं, निश्चित रूप से विटामिन डी का जांच करना चाहिए,
1: और
0: क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि ले लेंगे तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है।
1: फिर जो है विटामिन डी जो लेने का तरीका है, वो टेबलेट रूप में लेंगे कि इंजेक्शन के रूप में लेंगे, कैसे लेंगे?
0: यदि बहुत लो लेवल में है तो उसके लेवल को जल्दी एलिवेट करना पड़ता है, तो उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत है। और यदि बॉर्डर लाइन लेवल पर है तो टैबलेट से काम चल सकता है, उसको मेंटेन कर सकते हैं।
1: अब हम बात करें विटामिन B12 की, तो इसका क्या फंक्शन होता है बॉडी में?
0: विटामिन B12 एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका मेन रोल दो साइड पर होता है बॉडी में। एक बोन मैरो में, जो बोन सेल का फॉर्मेशन होता है उसमें होता है, इसके चलते खून की मात्रा शरीर में निर्धारित होती है विटामिन B12 से। तो कुछ लोगों में इसकी काफ़ी कमी होने से एनीमिया की बीमारी होती है। इसमें दो तरह की एनीमिया होती है। छोटे बच्चों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और वयस्क लोगों में पर्निशियस एनीमिया होता है। और दूसरा इसका इफेक्ट होता है ब्रेन और नर्व पर। नर्व भी डैमेज होता है इसकी डिफिशेंसी से, तो हमेशा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, चलने में दिक्कत होती है, कभी कभी मरीज लंगड़ा के चलता है, काफ़ी नर्व डैमेज हो जाता है।
1: अच्छा, तलवे में जलन और झुनझुनी,
0: हाँ, ये
1: क्या
0: सब
1: ये भी होता
0: विटामिन B12 की डिफिशेंसी से होता है।
1: है? यानी कि तलवे में जलन होने लगे तो समझ लीजिए
0: हाँ,
1: विटामिन B12 की कमी है।
0: कमी हो रही है। और कुछ इसका न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी भी हो जाता है, खाने पीने में सफिशेंट मात्रा में नहीं मिला तो हो जाता है।
1: तो इसे पूरा करने के लिए, शरीर में इसकी पूर्ति होती रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: हाँ, विटामिन B12 मुख्यतः एनिमल सोर्स में मिलता है,
1: अच्छा,
0: इसलिए जो एनिमल, जो वेजिटेरियन फूड में तो बहुत कम मिलता है, जैसे मोस्ट रूप से मीट में, फिश में, एग में, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट में B12 सफिशेंट मात्रा में मिलता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन को प्रॉब्लम नहीं होता है, वेजिटेरियन को प्रॉब्लम ज़्यादा होता है इसमें,
1: कोई साग सब्जी में नहीं मिलता है,
0: बहुत कम मात्रा में रहता है।
1: तो इसलिए जो है इसके लिए या तो दवा लीजिए या
0: हाँ
1: नॉन वेज खाइए।
0: हाँ नॉन वेज लीजिए।
1: लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए किस तरह की दवा रिकमेंड की जाती
0: हाँ,
1: है?
0: यदि उनका बहुत कमी हो जाता है लेवल में, तो उसमें भी इंजेक्शन देते हैं विटामिन B12 की या मेथी कोबालामिन की, और जिसे थोड़ा सा कम है तो उसमें टैबलेट रेगुलर लेने से भी काम हो जाता
1: हो जाता है।
0: है।
1: अब बात ये आती है कि यदि इसका भी ओवरडोज ले लिया जाए, टेबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, तो क्या इसका साइड इफेक्ट्स है?
0: नहीं, विटामिन B12 क्या होता है कि वाटर सोलेबल विटामिन होता है, तो यदि शरीर में इसका लेवल बढ़ता है तो स्वतः बॉडी उसको एक्सक्रेट कर देता है, तो उससे टॉक्सिसिटी का लेवल नहीं होता है।
1: तो मुख्यतः इस विटामिन को आदमी को अपने शरीर में मेंटेन रखना चाहिए, विटामिन D और विटामिन D12, क्योंकि दोनों की कमी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। शरीर में कैल्शियम नहीं आएगा डी की कमी से, और ये जो बीट

0: बेल्ट की कमी से भी तलवे में जलन, शरीर में दर्द या पैरों में झुनझुनी वगैरह जो
1: हाँ,
0: होती है,
1: एनीमिया एनीमिया हो जाता है।
0: एनीमिया होती है, खून की कमी हो जाती है, तो इसमें परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इन दो विटामिन्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी बहुत ही अच्छी और जानकारी वाली बात हमने सुनी इस भेंट वार्ता के माध्यम से, विटामिन बी एवं डी की कमी के बारे में। जिस तरीके से डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर ने बताया, तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और भेंटकर्ता श्रीनिवास सहाय को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और आपका विचार बटे।
2: विचार तो यही कि बिना गीत नाद के कार्यक्रम में मज़ा नहीं
3: आ
2: आता।
3: देखिए, गीत के जब बात करत नहीं तो झूमे वाला गीत रही तो
2: तो शादी का
3: कैसन विचार
2: शादी
3: बात।
2: का सीज़न चल रहा है, इसमें झूमने वाली बात झूमर तो होनी ही चाहिए।
3: शादी ब्याह में झूमर ना होई, झूमर तो होबे करी।
2: हाँ
3: तो चली कार्यक्रम के माध्यम से एगो झूमर सुनी आ सीख भी लीही,
2: हाँ
3: ताकि
2: हाँ
3: कहीं शादी में जाए के बाद यही झूमर गा देम।
2: बिल्कुल, तो सुन लेंगे और गा भी देंगे।

0: बहुत ही प्यारा ये झूमर, और मैंने सीख
1: रवा
0: भी
1: तो
0: लिया।
1: खूब खूब झूम झूम के सुनत रही आ सीख भी लेनी।
0: हाँ, सीख भी लिया। लेकिन अब समय हो चला है अपने चौपाल की घड़ी यहीं समाप्त करने की, और इनसे समय रहा तो और भी सुनेंगे। अब चलते हैं खेती गृहस्थी की तरफ।
1: हाँ तो अब खेती गृहस्थी में समय हो गई बा प्रायोजित कार्यक्रम के, तो चली सुनल जाओ। पारा मेडिकल है पारस।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233 ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
3: जानकारियों का अभाव है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रहे।

0: गई है। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
1: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
1: तो
0: नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक कि और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: जानकारी युवा साथियों को थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जवाब आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते

0: तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय विषय जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स है ही है ना
0: जी,
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी जी
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल। मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा हाँ। उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रोड जाना चाहता है तो एब्रोड जाए,
1: कहीं
0: उसकी
1: भी
0: इच्छा, कहीं भी हाँ। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लायक का है उसके लायक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
1: देना,
0: ऑक्यूपेशन
1: व्यवसाय
0: उसके लायक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो

0: आह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा। मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रहे प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। और प्रिया बहन, अब तो खेती गृहस्थी में किसान भाइयों के फायदा वाला बात हमने
3: और फायदे की जहाँ तक बात है तो खेती तो होती ही रहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर किसी व्यवसाय पर हम बात करें उससे जुड़े हुए, जैसे जब भी खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ अलग से भी जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, उसमें मुझे लगता है मोती पालन का व्यवसाय ना बहुत ही फायदेमंद है।
2: देखिए, मोती पालन एगो लाभदायक और आधुनिक व्यवसाय है। एकरा में सीप के भीतर कृत्रिम रूप से मोती तैयार कर जाला। भारत में जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के ढेर मनी जगह में मोती पालन होखेला।
3: बिल्कुल, तो मोती पालन एक बेहतरीन आय का साधन है ही, और इसके बारे में बताएं कि सबसे पहले तो इसे मोती पालन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका पालन करने के लिए खेत या घर की छत पर कम से कम 10 से 10 मीटर का तालाब या फाइबर के टैंक बनाना चाहिए। वहीं पानी का तापमान, उसमें जो पानी रहेगा उसका जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए।
2: अच्छा, और देखिए मोती पालन खातिर का आवश्यक बात बाटे, जैसे कि रेवा कहनी पानी के बात, तो पानी एकदम साफ सुथरा रहे के चाहिए। जैसे कि रेवा कहनी कि 10 बाई 10 मीटर के तालाब या फाइबर के टैंक बनावे के चाहिए, उसी तरीका से मोती के मतलब तालाब, झील या कृत्रिम टैंक के उपयोग भी कर जा सकेला। पानी के पीएच मान लगभग 7 से 8.5 के बीच रहे के चाहिए। और सीप के चयन कैसन होए के चाहिए, स्वस्थ और निमन गुण वाला सीप के चुनाव करे के चाहिए। सामान्यतः 8 से 12 सेंटीमीटर आकार के सीप के चुने के चाहिए। और एकर सर्जरी करे के प्रक्रिया का बा कि जेकरा जानकारी बा उ व्यक्ति सीप के अंदर एगो छोटा बीज के डिजाइन डालेला, एकरा बाद सीप के सावधानी पूर्वक बंद कर देवल जाला।
3: अब बात उसके खुराक की, सीप के खुराक की, तो सीप को भोजन के लिए तालाब में गोबर हम दे दें, शैवाल और केले के छिलके जैसे जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो इससे ये जैविक जो खाद है उससे ज़्यादा फायदा होगा।
2: देखिए, सीप के पालन में पोषण के देखभाल बहुत जरूरी बा। पानी की गुणवत्ता हमेशा निमन रखी। सीप पर जमल काई हो गई या गंदगी हो गई, ओकरा नियम से साफ सुथरा करते रहें। और मोती बनाने में कितना समय लगेला, सामान्यतः मोती तैयार होखे में लगभग 12 से 18 महीना लगेला। डिजाइन मोती बनावे में 18 से 24 महीना तक समय लग सकेला। वहीं मोती की कटाई की बात करी तो जब मोती पूरा तरह तैयार हो जाला तो सीप के सावधानी से खोल के मोती के निकाल लेवल जाला। एकरा बाद मोती की सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग भी कल जला। अब मोती से का लाभ बा, कम भूमि में नीमन व्यवसाय बा, मोती के बाजार में मांग भी बा, मोती के माला तो पहने में खूब नीमन
3: बहुत अच्छा लगता है और मोती ठंडा भी होता है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उसे कहते भी है कि मोती
2: पहन ले। देखिए, गांव देहात के युवा लोग खातिर भी, किसान खातिर भी ये रोजगार बहुत ही
3: फायदेमंद।
2: और देखिए, एकरा खातिर सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी बा। केवल स्वस्थ सीप के ही उपयोग करी, ऐसा ना कि ओकरा में बीमार चाहे खराब ऐसा तरीके के सीप नहीं लेना। और मोती पालन एगो

0: आकर्षक और लाभदायक कृषि आधारित व्यवसाय है।
1: और इसमें
0: उचित
1: पैसा भी मुनाफा भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के व्यवसाय को अगर हम किसान भाई और बहन चुने तो
0: हाँ
1: मुझे लगता है कि खेती के साथ ही साथ ये मुनाफा जो है ना आपने आपके जीवन जीने में ज़्यादा ही मदद करेगी आय के
0: एकरे
1: तौर
0: पर
1: पर।
0: देखिए एगो बात हमरा दिमाग में आवता कि जल के गहराई में छिपल व सफलता के खजाना मोती पालन अपना के किसान बढ़ा सकेलन अपन ठिकाना।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी लाइन कही आपने। तो मुझे लगता है कि जो हमारे किसान भाई बहन जो श्रोता अभी सुन रहे होंगे, वो जो अभी मोती पालन के बारे में विचार कर रहे होंगे या जिन लोगों ने विचार नहीं किया, वो ज़रूर इस व्यवसाय को करना चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो खैर सब चीज़ में है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से जगह पर भी इसका पालन कर सकते हैं। तो ये तो बात की मोती पालन की, अब क्या विचार?
0: देखी खेती बाड़ी के बात भेल, इतना निमन फायदा वाला बात भेल तो किसानी पर ही गीत भी होए के चाहिए। कहे ना कृषि गीत हमने के सुन लेवल जाओ, सुनवा भी देवल जाओ। तो चलिए शैलेंद्र कुमार सिंह के स्वर में कृषि गीत सुन लेवल जाओ।

0: प्यारा, ये हमने कृषि
1: कृषि
0: गीत
1: गीत
0: सुना
1: सुने,
0: शैलेंद्र कुमार सिंह से, इनसे इतने सारे जो लोकगीत सुने
1: सब
0: उसके
1: गीत
0: लिए
1: लाइन करा धन्यवाद देवल जरूरी बाटे।
0: धन्यवाद। के साथ ही साथ अब समय हो चला है आप सभी श्रोताओं से विदा लेने का, क्योंकि आज जाएंगे तभी कल वापस आएंगे अपने इस चौपाल और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार मीनू बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का

0: एक्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में राज्य में विकसित भारत जीरामजी योजना की निगरानी के लिए बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पुनर्गठन और गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित पंचायत से 28 जून को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीरपैंती पावर प्लांट, CNLU, निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। श्री तिवारी ने कहा कि भोजपुर मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिसकर्मियों

0: के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
1: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहां जहां से आया वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी।
0: इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हाल में हुए सभी मुठभेड़ के मामलों की जांच होनी चाहिए।
2: जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है, सरासर गलत है। इस पे विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए।
0: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को लेकर सतर्क है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सदा ने कहा कि विभागीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। श्री प्रसाद आज पटना स्थित नियोजन भवन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
3: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और वहां शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा।
0: केंद्रीय चयन परिषद की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों से इन ट्रेनों की परिचालन समय की सटीक जानकारी लेकर इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। अररिया जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने दोनों पालियों के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने

0: की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख 26 जून को यौमे आशूरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों ने आज फ्लैग मार्च किया है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सासाराम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने आज मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कटिहार जिले के कोलासी ओपी थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित टेंडर घोटाला मामले में मास्टरमाइंड ऋषु श्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निगरानी इकाई के पास इन सभी के खिलाफ ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो समय आने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोपी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 के लिए बिहार के 2 पैरा एथलीटों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के सोमन राणा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2 अक्टूबर से दिसंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पटना में खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन ने जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नए जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसैप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं की समस्याओं, रोजगार सृजन और उद्योग स्थापना को लेकर चर्चा की। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज निर्मली अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजस्व और लोकहित से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच स्थित बालिका विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल के जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले में चल रही खनन गतिविधियों, बालू घाटों की स्थिति और खनिज परिवहन पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सह

0: सिरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: नालंदा जिले की सदियों पुरानी और विश्व विख्यात हस्तकरघा कला बामन बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिल गया है। नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मिली यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई इस मान्यता से बावन बूटी की मौलिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। GI टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बुनकरों को बधाई दी और कहा कि जीविका सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से बावन बूटी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर खरीफ 2026 सीजन को लेकर जिले में कृषि गतिविधियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,53,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धान उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 1,47,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून और समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध होने पर जिले में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इधर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मिट्टी जांच, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजगीर प्रखंड के चयनित किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस नकदी फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम समय में बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। बिहार शरीफ शहर की सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अमृत 2 योजना के तहत बिहार शरीफ स्मार्ट के लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लगभग 101,63,00,000 रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य गंदे पानी को बिना उपचार के नदियों और नालों में जाने से रोकना है। परियोजना के पूरा होने पर जल जमाव की समस्या में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी मजबूती मिल रही है। 226 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 173 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इकाइयों पर कार्य जारी है। इन इकाइयों

गांव में गीले कचरे को नाडेप विधि से जैविक खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। परबलपुर, नगरनौसा, बेन और कराय पसुराय प्रखंड की कई पंचायतों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। राजगीर में आयोजित विश्व विख्यात राजकीय मलमास मेला 2026 का सफल समापन हो गया। एक महीने तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश से पहुंचे करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड सहित विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मलमास के दौरान राजगीर की पंच पहाड़ियां, मंदिर, मठ और साधु संतों के आश्रम श्रद्धा और भक्तिमय रहे। प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या ने इस वर्ष कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इधर मिशन निपुण बिहार

0: मलमास मेला 2026 का सफल समापन हो गया। एक महीने तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश से पहुंचे करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड सहित विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मलमास के दौरान राजगीर की पंच पहाड़ियां, मंदिर, मठ और साधु संतों के आश्रम श्रद्धा और भक्तिमय रहे। प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या ने इस वर्ष कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इधर मिशन निपुण बिहार के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आगामी 1 से 7 जुलाई तक जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पठन पर्व आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में स्वास्थ्य तथा संतुलित जीवन का संदेश दिया गया। भोजपुरी लोक संगीत को नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित भरत सिंह भारती की आकाशवाणी से विशेष बातचीत। और जानेंगे एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले युवा एथलीट पीयूष राज की संघर्ष से सफलता की कहानी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष का विषय था बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का अनुरोध किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आधे घंटे का योग कार्यक्रम वैकल्पिक तौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग ध्यान योग निद्रा कराई जाए, और वो कोई बात ही नहीं है आप करने के लिए। हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस।
2: भोजपुरी लोक संगीत और लोक धुनों के माध्यम से भोजपुरी संस्कृति को समृद्ध करने वाले लोक गायक भरत सिंह भारती को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। भोजपुरी लोक संगीत की इस विशिष्ट यात्रा और अपने अनुभवों पर भरत सिंह भारती ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत की।
5: मैं संगीत जो गीत जो गाता हूँ वो किसी पक्ष से लेकर नहीं गाता, किसी प्रचार से नहीं गाता। मैं गीत गाता हूँ गाने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि शुद्ध संगीत अगर मिलेगा तो मनुष्य का उत्तरोत्तर विकास होगा और हर क्षेत्र में उसका विकास होता जाएगा। तो हर युग में उसकी उस गीत की मान्यता रहेगी और हर लोग पसंद करेंगे इसको, ये ऐसे होता रहता है। कलाकार को अब तो हर विभाग में उसका

0: आगे बढ़ गया। अब कलाकारों को चयन हो रहा है, कलाकारों को प्रश्रय बहुत दिया जा रहा है, पुरस्कार मिलता है, करने का सुविधा मिलती है, सीखने के लिए पैसा भी देती है सरकार, तो बहुत कुछ कर रही है सरकार। तो कलाकारों के भी मोदी जी एकदम प्रणेता है और उनका भी इंतजाम बढ़िया से कर रहे हैं।
1: अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने पदक जीतकर सफलता की नई कहानी लिखी है। पीयूष ने मुश्किल हालात में सधे कदमों से सफलता की पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए पदक मंच तक सफर पूरा किया। एक रिपोर्ट।
2: रोहतास जिले के बंजारी गांव का एक लड़का जिसके सपनों की रफ्तार पहाड़ों की पगडंडियों और नदी किनारे की दौड़ से शुरू हुई। आर्थिक कठिनाइयां थी, पिता का साया भी सिर पर नहीं रहा, लेकिन हौसलों ने हार नहीं मानी। ये कहानी है बिहार के युवा धावक पीयूष राज की, जिन्होंने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पदक मंच तक का सफर तय किया।
3: मेरा नाम पीयूष राज है और मैं बिहार के रोहतास जिले के बंजारी गांव से।
4: बचपन से ही मुझे दौड़ने का शौक था। अपने गांव के पहाड़ पे नदी के किनारे मैंने दौड़ना शुरू किया और मेरा सपना था कि एक दिन अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खेलूं।
2: लेकिन सपना आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पिता के निधन के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई, फिर भी पीयूष ने दौड़ना नहीं छोड़ा।
4: 2022 में मैं अपने सपने को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं प्रैक्टिस करता था, पैसे ना होने के कारण मैं यहीं के मेस में काम करता था।
2: मेहनत रंग लाई, जूनियर नेशनल में रजत पदक मिला, फिर स्वर्ण पदक। यहीं से प्रतिभा पर खेल विशेषज्ञों की नजर पड़ी।
5: एक बार जब मैं पीयूष राज से मिला था, मैं इसी स्टेडियम में, इसी ट्रैक में निजाम के दरमियान हम मिले थे। 4 साल पहले की कहानी ये मैं बता रहा हूँ। और जैसे जैसे ये स्टेट लेवल पर, इस जोन के लेवल पर जब बढ़ते गया है, तो द्रोणाचार्य रमेश जी की नजर पड़ा और उनकी सजेशन पर हम लोगों ने इनको हैदराबाद भेजे थे गोपीचंद अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए।
2: बेहतर प्रशिक्षण, संतुलित आहार और लगातार मेहनत, पीयूष एक एक कर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते गए। पीयूष ने 11 राष्ट्रीय पदक जीते, फिर जूनियर एशिया और जूनियर वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया। पहली बार भारतीय जर्सी पहनने का मौका मिला। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम के साथ पीयूष ने कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
6: मुझे तो बहुत हो रहा है कि इसका मेहनत रंग लाए। तो बचपन में बहुत डांटते थे, 3 बजे 2 बजे रात में उठ के चल जाता था, डर लगता था कि पति खो दिए, बच्चा के कुछ हो न जाए। इसको लगन था दौड़ने का, बचपन से ही इसका था कि हम दौड़े कुछ करें।
2: ये उपलब्धि केवल पीयूष की नहीं बल्कि बिहार के खेल इतिहास की भी उपलब्धि बनी।
5: श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पीयूष को 9 लाख रुपया कैश अवार्ड दे के सम्मानित किए हैं।
2: रसोई में काम करने वाले एक युवा खिलाड़ी से लेकर एशियाई पदक विजेता बनने तक का सफर कई युवाओं के लिए प्रेरणा है।
4: किचन से लेकर एशियन चैंपियनशिप के पोडियम तक यह सफर मुझे एक बात सिखाता है, अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मेरा सफर अभी शुरू हुआ है, मैं आगे भी भारत और बिहार के नाम ऊंचा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा।
2: बंजारी गांव की पगडंडियों से शुरू हुई ये दौड़ अब अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक तक पहुंच चुकी है।
1: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन निधि श्री, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।
7: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: फिल्म सरफरोश से अभी आपने ये गाना सुना आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन तैयार किया था जतिन ललित ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेते एक छोटा सा अंतराल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म बादशाह से अभी आपने ये गाना सुना, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर किबोर अनु मलिक का संगीत। आशा भोसले और अभिजीत को आइए सुने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आनंद बख्शी के बोल और जतिन ललित का संगीत है, आइए सुने ये खूबसूरत सा गाना।

0: कुमार शानू और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म अलबेला में, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत। इसी गाने के साथ फिल्म संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति है हरिंद्र आजाद की।
1: प्रस्तुत है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 24 जून 2026 को नियोजन भवन पटना के छठे तल पर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय का उद्घाटन श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग सह युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा,
2: बाल श्रम बहुत ही एक दर्दनाक विषय है और शर्मनाक भी है किसी सभ्य समाज के लिए। इसलिए पूरी तरह से चरणबद्ध ढंग से बाल श्रम उन्मूलन हो, ये अत्यंत आवश्यक है और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ से चलाई जा रही है। जागरूकता अभियान के लिए उसकी पुस्तिका, पंपलेट सब देकर प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके बाल श्रमिक निवारण के लिए, इस प्रथा के निवारण के लिए कई प्रकार की यहाँ से योजनाएं संचालित रहती है और समय समय पर आयोग के सदस्यगण जाते हैं जिलों के अंदर, वहाँ समीक्षा करते हैं। वहाँ के हमारे जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, LS हैं, वो लोग उसमें भाग लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से इस कार्य को किया जाता है और जहां बाल श्रमिक को पकड़ा जाता है वहां से लाया जाता है, FIR होता है, उसके उपरांत उनको सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि उनके जीवन स्तर को हम उठा सकें और उसको स्कूल से जोड़ सके उन बच्चों को। उसके लिए 5,000 की राशि तुरंत दी जाती है, फिर आगे चलकर जो हम पनिशमेंट के तौर पर नियोक्ताओं से, दुकानदार से या जो उद्योगपति हैं उनसे लेते हैं तो उस राशि को भी फिर उस बच्चे के अकाउंट्स में जमा किए जाते हैं और इस तरह से उसके जीवन स्तर के सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जाता है।
1: उन्होंने कहा कि बाल श्रम के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ पुनर्वास पर भी सरकार का विशेष जोर है। आगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक 3 माह में राज्य के सभी जिलों के 3 पंचायत को बाल श्रम मुक्त किया जाएगा।
2: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से और वहाँ शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा। ये अभियान हम लोग शुरू करेंगे और इसकी आज घोषणा भी हम करते हैं कि हमारा बाल श्रम आयोग इस काम को करेगा।
1: कार्यक्रम में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार ने

0: श्रम और इसके उन्मूलन को लेकर के आकाशवाणी से बातचीत में कहा।
1: देखिए, बहुत तरह की योजनाएं चल रही हैं, अब खास कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस पर बहुत ही कड़ा संदेश देते हुए, बहुत ही जन कल्याणी योजनाओं को जोड़ते हुए बाल श्रम से मुक्त करने की दिशा में कई सौभाग्ययुग कार्यक्रम चलाए। उसमें सबसे बड़ी बात आई है, आज ही आप पेपर में देखे भी होंगे, माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि विभिन्न जिलों में जितने भी बच्चे बाल श्रमिक जो पकड़ाते हैं उसको हम लोग मुख्य धारा में लाने के लिए उसको हम लोग अपने आवासीय विद्यालय में रखेंगे, जहां बच्चे रहेंगे वहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ वो जिस विधा से आए होते हैं बच्चे, मान ली किसी कुम्हार का बच्चा है, किसी राजमिस्त्री का बच्चा है, तो उसको उसी विधा का स्किल से उसको डेवलप करेंगे, और आगे चल के जब वो 18 वर्ष से ऊपर होगा तो उसको और भी उसकी शिक्षा का ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये तरह की चीजें हैं। बाकी जो है उसमें देखा गया है बाल श्रमिक के पिता को हम लोग किस परिस्थिति में आकर के वो बाल श्रम का काम करता है। गरीब का बच्चा होता है, पढ़ने के समय में वो ईटा ढोने लगता है, चाहे कोई श्रम का काम करने लगता है, बहुत ही अपराधी काम है। तो सरकार ने इसको मुख्य धारा में लाने के लिए वो इसके पेरेंट्स को, घर नहीं है तो अनाज नहीं है तो अनाज देते हैं हम लोग, उसके पिता को चाइल्ड लेबर के होने के नाते उसको हम लोग श्रम कार्ड बनवा देते हैं, उससे उसको लाभ देते हैं। कई तरह के चीजें हैं जिससे कि उसके पेरेंट्स के आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम करते हैं, ताकि वो बाल श्रम का काम न करे।
0: जी सर, अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में आती है, कहीं पे बाल श्रमिक पाए जाते हैं या जबरन कोई बच्चों से इस तरह का कार्य करवा रहा होता है, तो ऐसे लोगों पर आयोग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है?
1: बहुत कठोर कार्रवाई है जी। अगर कोई नियोजक अपने यहाँ किसी बच्चे से काम लेता है तो उसको पकड़ाने के बाद उससे हम लोग 25,000 से 50,000 तक आर्थिक दंड देते हैं
0: जी।
1: और उस आर्थिक दंड के बाद भी अगर दोबारा उस कार्य को पूर्णवर्ती के रूप में काम लेता है तो उसको 2 साल तक की सजा है
0: जी।
1: वैसे स्थिति में बहुत तरह का, हम लोग का हर प्रखंड में एलईओ है, जिला में आपका लेबर सुपरिटेंडेंट है, इन लोगों के अंदर धावा दल है, वो बराबर चारों बगल घूम घूम के इस चीज को निगरानी करता है। उसमें बिहार में काफी इसमें सुधार आया है, बाल श्रम बहुत मुक्त हुए हैं, और बहुत जल्द हम लोग इस दिशा में और भी बढ़िया काम करेंगे, ताकि कोई बच्चा मजदूरी करता हुआ ना दिखे, उसके हाथ में किताब दिखे।
0: क्या बात जी। सर, वैसे पेरेंट्स जो जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अगर उन्हें किसी तरह से मदद की जरूरत हो तो क्या आयोग उस दिशा में भी मदद करता है और वे लोग संपर्क कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, हम लोग उसके पेरेंट्स को, कि यदि राजमिस्त्री है
0: जी,
1: चाहे वो बरही है, वो जिस विधा में है, हम लोग उसको प्रोत्साहन राशि देते हैं, औजार खरीदने के लिए पैसा देते हैं, तो वो जब औजार खरीदेगा, अपने स्किल को डेवलप करते हुए और काम करेगा, तो उसके पारिवारिक स्थिति सुधरेगी, उसके बच्चे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए भी पैसा देते हैं, उसकी बच्ची जब बड़ी होती है 18 वर्ष से ऊपर होता है तो उसके शादी विवाह में भी हम लोग 50,000 रुपया राशि देते हैं उसके शादी विवाह करने के लिए, वो अस्वस्थ होता है तो उसके इलाज कराने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, पोशाक का पैसा देते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जो कि आपको इसमें हम लोग उसको प्रोत्साहित रूप में करते हैं, ताकि वो बच्चे को पढ़ाए न कि उसे मजदूरी ले।
0: आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह ने आयोग की गतिविधियों एवं कार्यकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
2: श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के तहत ही बाल श्रम आयोग आता है
0: जी।
2: हम सब मिल करके जो 14 साल से नीचे का बच्चा है
0: जी,
2: जिनसे बाल मजदूरी कराया जाता है, ये सामाजिक अभिशाप है। अगर वो बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज के लिए एक एसेट बनेंगे,
0: निश्चित रूप से
2: वो अपने परिवार के लिए एसेट बनेंगे, वो एक महत्वपूर्ण बिहार के लिए नागरिक बनेंगे, और अगर उनका शिक्षा दीक्षा नहीं होगा, अगर वो बाल मजदूरी में झोंक दिए जाएंगे, तो एक तो वो अपराधी बन सकते हैं, दूसरा चीज़ है कि जीवन भर मजदूरी में उनका जीवन कट जाएगा। वैसे व्यक्ति समाज को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका

0: भूमिका नहीं निभा सकता है। तो हम सब लोग का मानवता के लिए हमारा दायित्व बनता है कि बाल श्रम को रोके। बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप है और श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बाल श्रम रोकने के लिए अथक प्रयासरत है पूरे बिहार में, और इसके तहत पूरे बिहार के हर जिलों में हम कार्यरत हैं। हमारे लेबर डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं धावा दल के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से और लोगों से मिल करके लोगों को जगाने का काम करते हैं, और इसी के तहत हम सब मिल करके बाल श्रम को रोकने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और जिसका आज परिणाम है कि हमारा श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग लोगों को जागरूकता के माध्यम से, श्रमिक कार्ड के माध्यम से, लेबर कार्ड जो बनाया जाता है उनके माता पिता को, रोजगार के माध्यम से, शिक्षा देने का माध्यम से और अन्य तरह से उन्मूलन करके बाल श्रम को हम अभी एक अभियान के तहत लिए हैं, और उसके तहत हम लोग काम करेंगे कि पंचायत स्तर पर बाल श्रम मुक्त हो और बिहार आगे बढ़े, शिक्षित हो और सुदृढ़ हो, रोजगार उन्मुख हो और हमारे बच्चे बिहार के भविष्य बने, बिहार के लिए एसेट बने, मेधावी हों।
1: जो लोग अगर बाल श्रमिक आयोग से जुड़ना चाहते हैं, उनको अगर कोई शिकायत है या किसी मदद की जरूरत है तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? आपके कार्यालय में आवेदन देना होगा, कोई टोल फ्री नंबर है या क्या कुछ विशेष जानकारी?
0: हमारे यहाँ एक व्हाट्सएप नंबर है जो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पास है, 9471229133। इस नंबर पर आप कंप्लेन करिए, 24 से 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई आपको सुनिश्चित मिलेगा। बिहार के हर एक जिला में श्रम अधीक्षक हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, हर एक प्रखंड में हैं और ये सब कार्यरत हैं, और ये सब के साथ धावा दल भी है, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, शपथ पत्र भी भरवाते हैं और लोगों को मदद भी करते हैं। जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनके नाम पर तुरंत 25,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, तत्काल प्रभाव में उसी समय उनको 3,000 का कपड़ा खरीद दिया जाता है और जैसा उनको जरूरत है कि स्कूल में देने का वहाँ पर उनको देने का काम करता है, जिससे उनकी समुचित व्यवस्था हो। तो बाल श्रम आयोग, श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग लगातार बिहार में बच्चों के बाल मजदूरी को रोकने में सक्षम हो रहा है, और हम आगे जो है इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी हम लगातार रहेंगे, और बिहार में हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार पूर्ण रूपेण बाल श्रम मुक्त हो। यहाँ का हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक हाथ को काम मिलेगा और हर एक मजदूरों को दाम मिलेगा।
1: क्या बात है सर, इस आयोग को एक तरह से जुडिशियल पावर भी है, तो ऐसे में सर जो उस पावर को आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो संबंधित लोग होते हैं उनको लेकर के किस तरह से कार्रवाई आप लोग सुनिश्चित करते हैं और आयोग द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जाती हैं?
0: हमारे यहाँ हर एक जिला में कुछ एनजीओ और कुछ हमारा धावा दल गठन है जी। हर एक जगह उसमें लेबर इंस्पेक्टर हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, इस तरह के बड़े अधिकारी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से धावा दल जा करके सुनिश्चित करता है और उसको पहले उसको रेकी करता है कि कहां पर बच्चे से मजदूरी कराया जाता है, और रेकी के तहत जो आते हैं उनको पकड़ता है और पकड़ने के बाद उनको समुचित उनके माँ बाप को देखता है कि क्या किस परिस्थिति में है, उनके माँ बाप हैं नहीं हैं, किस परिस्थिति में मजदूरी, सारा विषय को समझते हैं। तुरंत FIR किया जाता है, 25,000 रुपया उनके नाम पे उसी समय फिक्स डिपॉजिट कर जाता है, 3,000 का कपड़ा खरीदा जाता है, अगर उनके माँ बाप को कोई रोजगार नहीं है तो लेबर कार्ड बना करके और जी राम जी के तहत और मजदूरी कराने का व्यवस्था किया जाता है कि उनको रोजगार मिल सके। और इतना ही नहीं, बच्चे को तुरंत जो है तत्काल समाज कल्याण विभाग का जो आयोग है उसके माध्यम से उनको स्कूल में डालने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का व्यवस्था करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं और सारा काम लगातार हमारा विभाग उसका मॉनिटरिंग करता है। और उनको जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, 14 से 18 वर्ष तक नहीं हो जाए, तब तक वो उनको वहाँ पर रहना पड़ता है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत जी
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: इस अवसर पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार, विशेष सचिव सह सचिव बोर्ड श्री सुनील कुमार यादव, विशेष सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद, श्रम आयुक्त बिहार श्री राजेश भारती सहित आयोग के अन्य

0: अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
3: It is really our responsibility.
4: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
3: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
5: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र

0: जिसमें 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा

0: envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसकेएम अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश

0: के की पन्योर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोहयून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कैनेडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई तआवुन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी तआवुन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना नहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी तआवुन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शोहयून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिले एतमाद शराकतदारों के दरमियान तआवुन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात और वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाइस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़्वामे मुत्तहिदा की बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम IMO के तआवुन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाजों की महफूज आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमद रफ्त के मनसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाकई भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर भारतीय शहरियों के लिए सफर से मुतालिक नजरसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने हालिया मुस्बत हालात वाकयात और मजमू सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफर के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुजेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और मकामी हालात से बाखबर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोतबर जराए से वहां के हालात व वाकयात पर नजर रखें और मकामी हुकाम की जानिब से जारी करदा हिदायात पर अमल करें। ईरान में

0: मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और नए आने वालों को जल्द अज जल्द सफारतखाने में अपनी मालूमात दर्ज कराने का भी मशवरा दिया गया है। इसके अलावा सफारतखाना ने सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी होने वाली ताज़ा मालूमात और हिदायात पर बाकायदगी से नजर रखने की तलकीन की गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: मगरी बंगाल में कोलकाता के तराताला इलाके के नजदीक जेर तामीर एक गोदाम के मुनहदिम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोदाम के मुनहदिम होने से कई मजदूर भारी लोहे के मलबे तले दब गए हैं। एसएसकेएम अस्पताल में 5 अफराद को मुर्दा करार दिया गया जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। रियासती वजरा अग्निमित्र पॉल और डॉक्टर इंद्रानिल खा भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए हादसा पर पहुंचे। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ पुलिस आग बुझाने के अमले इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय फौज की टीमें तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अंदेशा है कि और भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 1070-9897-0031-00-33221-4352-6 और 0332-25-351-85। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
0: भारतीय फौज एनडीआरएफ पुलिस और आग बुझाने वाले अमले के अफराद मुश्तरका तौर पर कोलकाता के तराथरा इलाके में जेर तामीर गोदाम के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने जाए हादसा का दौरा किया और इमदादी अहलकारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी आज रात उन्हें हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कोलकाता से करियान लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपनियार जिले के तहत यजाली सर्कल में नीपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नीपको के प्रोजेक्ट के सरबराह ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए नहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी लखीमपुर बिस्वानाथ और सोनीपुर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: नायब सदर जनाब सी वी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इकतदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है।

और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नीज आइन में पेश किए गए इंसाफ, मसावत और आज़ादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खुसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबोहवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थीं। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिनजाम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगीमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज़ नाअहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेश हुई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकोवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कोंगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रेयर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमन सब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Chef Jeff Abishaki.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट ह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र

0: में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी,
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है, या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो उनको बकायदा हम जहाँ

0: भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहाँ भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशन भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटपुट, थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं
1: जी
2: पैरा एथलीट हूँ, वो शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है।

0: कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल था, जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा ये सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर के पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीज़ों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत
2: सो
1: इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद दी मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सोल्यूशन
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशन एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप

0: हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश दयाल। वंश दयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं।

0: लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूँगा, ऐसी रह जाऊंगा। मम्मी से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सब की हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं सलाह देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ, मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत।

0: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी, और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता, ये सुने फिल्म संगीत।

साधना सरगम और कुमार शानू को अभी आपने सुना फिल्म में एक लड़का एक लड़की में मजरूं के बोल और आनंद मिलन का संगीत। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

फिल्म चोर और चांद, आइए इस फिल्म से गाना सुने अनुराधा पौडवाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। योगेश के बोल और निखिल विनय का संगीत है।

अनुराधा पौडवाल और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म चोर और चांद का ये गाना। इस गाने को लिखा था योगेश ने और धुन तैयार की थी निखिल विनय ने।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

विश्वास अनवरत साथ।

AIR at 90. फिल्म वास्तव का ये गाना सुने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

फिल्म खूबसूरत से अभी आपने ये गाना सुना कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। संगीत इस संगीत को लिखा था संजय छैला ने और धुन तैयार की थी जतिन ललित ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

और आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म ज़मीन आसमान का ये गाना, अनजान के बोल और आर डी वर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म देवता में, गुलजार किबोर और आर डी बर्मन का संगीत।

आइए अगला गाना सुनें, फिल्म तराना से शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गाना रविंद्र

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जूली फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की।

0: आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।